गौ ब्राह्मण को गला वागो प्रतरण दा जाई तोटी टिक्का तै जब माली तान शखाई अंतर पूजा पढ़े कते बासन गुर का पास।

पर शर्म धन का डेरा दूर नानकूर रया पर भूर मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मले स्थाने पूजे प्राण अब आख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो आना साडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली भेन कहो नानक सच ते आई है सोच हो वैता सच पाई पौड़ी।

叫他जिन यंत्र हर हर प्रीत है ते जन सुख

मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़ की सूतक वेखना परत्रया पर धन रूप कने सूतक कन पहलाए तबारी खाहे नानक हंस आदमी बदे जनपुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जा।

0: ఎల్ ఇండియా రెడ్జి సింధి సరసాయి నేబర్హుడ్ వన్ న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ ఆప్ అండ్ డిటిఎచ్ తే ऐसा ही प्रोग्राम जा तफसील कुछ नजर आए थोड़ी देर में अभी भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज बुध तेखा पोए तकरीर पेश कई उन्होंने है मोहन जे दड़े वाली सभ्यता तेजो अव अज भांगो बो बुधा इन्हीं का कुछ कलाम नशर क्या वा याद रही असा प्रोग्राम की तफसील ऑल इंडिया रेडियो की सिंधी सर्विस है हिंसर छो तो भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज बुधूं
1: अर्जुन खुटी कंस से जो बलियन

0: अमां भगत कौराम जंजो सदाबार आवास सुधरिया ऑल इंडिया रेडी जी सिंधी सर्विस आए यहाँ पेशा तकरीर उनवान है मोइन जे दड़े वारी सभ्यता पेंजो भांगो बियो पेश आए सिंध सिंधी किताब में लेखक भेरमल मेरचंद आडवाणी मोइन जे दड़े वारी आलिशान सभ्यता बाबत लिखंदे चवन था कि उतां जी शिकिल शबी पोशाक ए ज़वर बाबत वधीक बुधाइन था कि शिकिल ए शबी मोइन जे दड़े मां जेके पुतला हथ आया तिन मां कदीम सिंधन जी शिकिल ए मुहाणन जो अंदाज़ो करे सघिजे थो हू कद जा बिंदरा ए बुत जा सिटोटरा हुआ चप भरियल ए अखियूं सोड़ियूं हुअन इहे मुहांडा फकत मोइन जे दड़े जे रहाकुन जा हुआ या आम तरह सभिनी सिंधियुनि जा हुआ तंहिं बाबति काफ़ी साबती कोन्हे सभिनी पुतलनि में ॾिसे थो त माण्हुनि जो कंधु थुलो ऐं भर भरियो आहे ऐं गिटनि जा हॾा चपथरा अथनि पुतलनि मां हीअ ॻाल्हि बि साफ़ ज़ाहिर आहे त मर्द नंढियूं ॾाढियूं रखाईंदा हुआ मुछूं किन जूं कोड़ियल त किन जूं रखियल हुयूं मथे जा वार पेशानीअ वटां वराए पुठियां वेड़े मंझंदि कंघो अटकाए छॾींदा हुआ के क्यारीअ वटां वार कुतराए नंढा कंदा हुआ जंहिं करे इन्हनि खे वेहण जो ज़रूर कोन थींदो हो ज़नानी शिकिल वारनि पुतलनि मां ॾिसजो थो त के ज़ालूं पंहिंजा वार ॻिचीअ वटां वराए पोइ तां खुलियल छॾींदियूं ऐं के चोटी वेड़े सिंह वांगुरु चहमदार कंदी हुयूं पोशाक बाबति अॻिते लिखंदा कि मर्दनि जी पोशाक धोती ऐं चादर हुई जंहिं जो पल साॼे भुगल हेठां लंघाए ॾाहे कुले ते उछले विझंदा हुआ किन पुतलनि मां ईअं समझण में पियो अचे त धोतीअ बदिरां हिकु अहिड़ी घघरी पियल अथनि जहिड़ी हिन वक़्तु लंघा यानी कि दुलारी पहिरनि था के मूर्तियूं बिना उघाड़ियूं आहिनि ऐं किन में माण्हुनि खे लंगोट चढ़ियल ॾिसण में अचे थो ज़ेवर बाबति अॻिते लिखियलु आहे कि मोइन जे दड़े वारे ज़माने में ज़ालूं तोड़े मर्द ज़ेवर आम तरह पाईंदा हुआ कंठी हासी ताइथ ऐं मुंडियूं मर्द बि पाईंदा हुआ इन्हनि खां सवाइ ज़ालूं गन या पंडड़ा दाणनि जा हार चांदीअ या सोन जूं कंगड़ियूं ऐं नोरा पाईंदी हुयूं किन पुतलनि में ज़ालुनि खे बुक ते बाहें कुले ताईं पियल ॾिसण में अचे थी जंहिं मां ज़ाहिर आहे त उन ज़माने में चूड़ींगर बि हूंदा हुआ किन ज़ेवरनि ते जुड़त जुड़ियल में ॾिसण अचे थी जंहिं करे चइबो त जड़वा बि हुआ किन घरनि मां ज़मीन जे हेठां पूरियल के टामे जा बासण बर्तन आर्कोलॉजिकल खाते जे सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर दीक्षित लदा जिन सां गॾु हिकु मड़ियल काराई पिण हुई हिकु थांव में क़ीमती ज़ेवर पियल हुआ जिन ते जुड़त जुड़ियल हुई सर जॉन मार्शल इन्हनि ज़ेवरनि लभण खां सघो ई पोए लिस्टेड लंडन न्यूज़ में लिखियो हो त सोना ज़ेवर अहिड़े उमदी रीति घड़ियल आहिनि ऐं ओजर यानी कि पॉलिश अहिड़ी ऊची अथनि जो ॼण त लंडन जे बॉन्ड स्ट्रीट यानी कि सोनारनि जे घिटियुनि मां हींअर घिड़जी आया हुजनि ऐं 5000 वरनि जा झूना भाइजनि ई कोन था क़ीमती पत्थर बाबति अॻिते लिखियलु आहे कि मोइन जे दड़े मां जेका ज़ेवरात हथ आई आहे तंहिं मां पतो थो पवे त क़दीम सिंध जा रहाकू अकीक या संग सलेमानी यानी कि अगेट नीलम ऐं पेरोस ऐं ॿिया क़ीमती पत्थर हार जे दाणनि तोड़े ज़ेवरनि लाइ जुड़त तौर कम आणींदा हुआ हड़प्पा तोड़े मोइन जे दड़े मां शीशो कोन लदो आहे पर इन ज़माने में कारीगर हिकु अहिड़ो लेप ठाहींदा हुआ जो सुकण खां पोइ शीशे वांगुरु बखंदो हो इन ई मां दाणा ठाहींदा हुआ जे क़ीमती पत्थरनि बदिरां कम आणींदा हुआ सन 1924-25 में हिकु सुहिणो हार लदो जो खुद साख पियो भरे त कंहिं क़ाबिल कारीगर जो जोड़ियल आहे मिस्टर रखलदास बैनर्जी जंहिं मोइन जो दड़ो पहिरीं खोटायो सो त मेघरनि जी साराह मां ढापई नथो जे ऋग्वेदनि में जिन आर्यनि जो ज़िक्र कयल आहे तिन खे बि अहिड़ो हुनर कोन हो जहिड़ो मोइन जे दड़े जे कारीगरनि खे हो सर जॉन मार्शल बि इन हार जी घणी साख कई आहे खेतीअ ऐं ॿियनि हुनरनि बाबति चयल आहे त क़दीम सिंध जे पोखराई बाबति घणो पतो त कोन पियो आहे बाक़ी मोइन जे दड़े मां कणक ऐं जव लधा आहिनि जेतोणीक तिरनि जो हिकु दाणो बि कोन लधो आहे त बि ईअं वसण लाइ सबबु थो थिए त तिरनि जी पोख थींदी हुई छाकाणि त ऋग्वेद मां मालूम थो थिए त इन अगाटे वक़्त में पंजाब ऐं सिंध में तिरनि ऐं जवन जा फसल भलाई थींदा हुआ हिन वक़्तु अन पीअण लाइ जेके जंड कम अचनि था से ईस्वी सन खां 2 सदियूं अॻु खनि चालू थिया हुआ अॻे जंडनि जो नमूने ॿियो हूंदो हो उते और नमूने जा जंड मोइन जे दड़े मां तमामु घणा लधा आहिनि इन मां मिस्टर मैकी इहो अनुमान कढियो त अन जी पोख घणी थींदी हुई जंहिं करे माण्हुनि वटि जंड बि घणा हूंदा हुआ खाधे बाबति लिखियलु आहे कि कणक ऐं जवन खां सवाइ माण्हू खजूर बि खाईंदा हुआ खारकुनि जूं खखड़ियूं खोटाए कंदे वक़्तु हथायूं आहिनि इन वक़्तु माण्हू मांस मछी बल्कि ॻाढ़ो गोश्त बि खाईंदा हुआ दरिया जी मछी जा त खुराकी हुआ पर कछूं ऐं कुनियूं बि कीन छॾींदा हुआ कुतण ऐं उणण जो हुनर बाबति लिखियलु आहे कि केतिरा ऐट ऐं टिक लधा आहिनि के त सादा त के उचा इन मां समझे थो त ग़रीब तोड़े शाहूकारनि जे घर में चरखे चोरण जो रवाज़ हो दड़े मंझां हिकु चांदी जो थां जोहरात ऐं मणियुनि सां भरियल लधो जो उची तरह उणियल कपड़े सां विरियल हो इन में देसी कपिड़े कमु आंदल आहे तंहिं मां ज़ाहिर थो थिए त 5000 वरे अॻु सिंध में वञणनि जी पोख थींदी हुई ऐं इन क़दीम ज़माने में सिंधी माण्हुनि वटि कपड़े उणण जा आडाणा बि हुआ धातू बाबति लिखियलु आहे कि क़दीम ज़माने जे माण्हुनि वांगुरु मोइन जे दड़े जा रहाकू पथर जा औज़ार ऐं थां थपा त कमु आणींदा ई हुआ
1: पर टामी जी भी सुध हुयन जैमा पण बासण बर्तन ओजार बल्क के गहना भी जोड़ींदा हुआ। लोह जो जरो भी कोन लदो आए पर ही जमानो अड़ो ही हो जैमे माण्डन के लोह मारण जो अकल अन्या आयो ही कोन हो। कलई भी धार कान लदी आए बाकी रुगो टामी सा गड हथ आई आए मोहन जे दरे वारो टामो ए कलई गडे ब्रॉन्स ठाईंदा हुआ जैमा भी थाव थपा ए ओजार जोड़ींदा हुआ। मिस्टर मोहम्मद सना अलह

मखरोती शकल जा वड़ा पत्थर लदाइन जिन मथा सुराख आन इन सुराखन में डोर लंघाए सकजे थी। ये पत्थर तुर महल वट करे कम आणींदा हुआ कि नंढा वट खाकी रंग जे सिलेट जा पेप जे शिकिल जड़ा आन जे एलम ए मेसोपोटेमा जे वटन सा मुशाबत भी रखन था। मिस्टर ए एस मैकी चवे तो मोहन जे दड़े जा ये वट एलम ए मेसोपोटेमा जे कदीम वटन का वधिक सोधा ए पूरा आन। अवां भेरूमल मेरचंद आडवाणी जो लिखल आर्टिकल मोहन जे दड़े वारी आलिशान सभ्यता जो एकड़ो हिस्सो बुधी रहा जिन्हें उन्वान हो शिकल शबीय पोशाक ए जेवर जो कलमबंद कल है किताब सिंध ए सिंधी में अब तकरीर बुध रहा उन्वान हो मोइन के दड़े वाली सभ्यता भांगो बो ऑल इंडिया रेडियो की सिंधी सर्विस है। ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस वन बुध रहा ऑल इंडिया रेडियो की सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर ऐप ए डीडी फ्री डिश से बुधी सी। पेश कुछ कलाम

थोड़ा कलाम मुद्रिया ऑल इंडिया रेडियो की सिंधी सर्विस है हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी वह वहीं अवसा गजानी थी सुबह सुबह जो भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन डींदा इजाजत सनाई कर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts.
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
2: The Prime Minister said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. He said as the second week of parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. The Delhi

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 7:10 और पूरे 20 सेकंड। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुमित कुमार द्वारा गाये भजनों का। सहयोगी कलाकार रहेंगे सितार पर अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर प्रदीप्ता महाराणा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना सुमित कुमार द्वारा गाए भजन। सितार पर थे अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर प्रदीप्ता महाराणा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी में ही बदली स्टाइल गया है, जो कहानियां होते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, वेकअप कर लीजिए यानी कि जाग जाइए, क्योंकि आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आरती को और आपके लिए लेकर कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें हम सुनाते हैं आपको खूबसूरत से आपकी पसंद के गाने, करते हैं ढेर सारी बातें और साथ ही सुनाती हूँ मैं आपको एक चुटकी वाली कहानी। जी हाँ, आज भी आपके लिए खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ, वो भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले करते हैं दिन की शुरुआत, चलिए इस खूबसूरत गीत के साथ जो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है।

दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और उसके लिए आप कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आके आपको या तो टोक देता है या आपके काम में कोई कमी निकाल देता है, या फिर वो ये समझाने बैठ जाता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुमको वो करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, ज्ञान देने वाले आपके राह में बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि आपको क्या करना है, क्योंकि उन ज्ञान देने वालों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं। ये आपको समझना है और आज की जो ये कहानी है ये उसी से जुड़ी हुई है। इस कहानी को भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप सब स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं हूँ आरती गौड़, आपके लिए कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और चलिए एक और खूबसूरत सा नगमा हो जाए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आज की कहानी आपको क्या सिखाने वाली है।

तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। नाम है चित्रकार और दर्पण। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक युवा चित्रकार अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर जाके खड़ा हो गया और उसने पता है नीचे क्या लिखा। उसने लिखा कि अगर इस पेंटिंग में कोई कमी दिखे तो यहाँ पर जहाँ भी आपको कमी दिखाई दे रही है वहाँ जाके एक लाल निशान बना दीजिए। शाम को वो बड़ी खुशी खुशी गया कि लोगों ने बताया होगा उसकी परेशानी को, लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि पूरी पेंटिंग जो थी वो लाल निशानों से भरी हुई थी। वो बहुत दुखी हुआ कि इतनी कमियां हैं मुझमें, मैं तो सोचता था कि मैंने बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई है। और दुखी होने के बाद वो पहुंचा अपने गुरु के पास दुखी होकर और सब कुछ बताया। गुरुजी ने मुस्कुराया और कहा कि एक काम करो, फिर से इस पेंटिंग को बनाओ, लेकिन इस बार उसी चौराहे पर जाकर इस पेंटिंग के नीचे बोर्ड रखना और उस पर लिखना कि जहाँ पर भी आपको कमी दिख रही है ना, उसे सुधार दीजिएगा प्लीज। और ब्रश और रंग, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, वो उस पेंटिंग जो जहाँ पर आप रखोगे ना, वहाँ पर रख देना। चित्रकार ने गुरुजी की बात मानी और ऐसा ही किया। लेकिन शाम को जब वो पहुंचा तो वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसको सुनने के बाद आपको भी बिल्कुल शॉक लग जाएगा। क्या देखा उसने, ये बताऊंगी इस गीत के बाद।

तो दोस्तों, मैं सुना रही थी आपको एक युवा चित्रकार की कहानी, जिसने एक पेंटिंग को चौराहे पे रखा और अपनी कमियां बताने को कहा, तो लोगों ने उसमें बेहतरीन कमियां बताई, यानी सिर्फ कमियां ही बताई। उसके गुरु ने कहा कि इस पेंटिंग को आप फिर से बनाओ और फिर से वहीं रख कर आओ, लेकिन ब्रश और पेस्ट जितने भी कलर हैं वो सब कुछ वहां पे रख देना, और साथ में आप लोगों से ये कहना कि अभी आपने कमियां बताई थी, अब उन कमियों को आप सुधारिए। चित्रकार ने तो ऐसा ही किया, लेकिन जब वो शाम को वहां पहुंचा तो देखा कि पेंटिंग जैसी की उसने रखी थी उसको वैसी ही मिली। पता है क्यों? क्योंकि किसी ने उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, लोग तो बड़ी कमियां देख रहे थे। हकीकत भी यही है दोस्तों, क्योंकि इसी छोटी सी बात में बहुत बड़ी सीख भी छुपी है। कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो लोग भी आपकी तरक्की में सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं ना, उनकी बातों को इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी जिंदगी को सबसे खूबसूरत रंग में खुद भरिए, और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कामयाब नहीं होते हैं तब लोग आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तब लोग आपके साथ आते हैं। लोगों की यही फितरत है, और उनकी फितरत में आपको शामिल होने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी है अपने आप को निखारने की, अपने आप को संपूर्ण करने की।

हाँ दोस्तों, आप हमेशा जब कमियां देखेंगे तो आप कभी भी निखर नहीं पाएंगे। इसीलिए दूसरे क्या करते हैं उस चीज को छोड़िए, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि हर इंसान में कमियां हैं तो खूबियां भी हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि एक कमल के फूल को देखकर कितनी खुशी होती है, लेकिन वो खिलता कहाँ पर है? वो खिलता है कीचड़ में। अगर हम उस कीचड़ को देखेंगे तो कमल कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से गुलाब का फूल, जब प्यार मोहब्बत की बात हो, दोस्ती की बात हो, या कहीं भी आपको किसी को खुश करना होता है, तो आप फूल गुलाब का पेश करते हैं, लेकिन वो फूल जो होता है वो कहाँ खिलता है? कांटों के बीच में। यानी कि वो भी कमियों से जुदा नहीं है। इसके अलावा अगर आप चांद को देखेंगे तो चांद से खूबसूरत तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं वाह क्या चांद का चेहरा है, लेकिन चांद में भी तो दाग है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी खूबसूरती को देखते हैं या उसके दाग को। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किसी की कमियों से ज्यादा उसकी खूबियों पर ध्यान देना है, और तभी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और अपने आप में भी ये बात याद रखनी है कि आपसे अच्छा कोई नहीं।

दोस्तों, आप सबको ये कार्यक्रम आई होप पसंद आया होगा। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनी जिंदगी में रंग भरते रहिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
5: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल

0: भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
0: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
5: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
0: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है. वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया.
5: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
6: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the centre's decision to establish fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Rohan for Akashwani News, Delhi.
5: Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night, in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. We have a report.
7: Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchuk went on a hunger strike from 28th of last month, demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The Prime Minister also prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced the closure of 17 metro stations with effect from 7:30 a.m. today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakhamba Road, Mandi House, Central Secretariat, ITO and others. However, the interchange facilities will continue to be available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handlers involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi police DCP Sumit Jha said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. The centre's appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Joshi, who is presently Secretary Higher Education in Ministry of Education, has been appointed as Secretary Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary Higher Education. T.K. Anil Kumar will be Secretary School Education and Literacy. India has developed its first indigenous expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. It has been developed by DRDO's Gas Turbine Research Establishment. Ministry of Defence said that delivery of such a complex system based on the design of DRDO reflects the growing technological capabilities of the Indian defence industry. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts.

0: Toll in Assam due to floods has risen to 47 with 6 more deaths reported yesterday. Over 7.21 lakh people are affected by the floods in 11 districts across the state. Meanwhile, the India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, began in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. The Indian contingent, led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain, marched with athletes waving miniature tricolours. The contingent received a warm welcome from the Glasgow crowd as India's athletes celebrated the start of their campaign. India opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semi-finals after receiving a bye. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today. Headlines the Hindustan Times. The Pioneer headlines. PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines. PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines. PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UG paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350kg thrust class. India and Romania signed 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान पहले इस वक्त की खास खास खबरें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है भारत ने 350kg थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है भारत और रोमानिया ने साइंस टेक्नोलॉजी तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने की खातिर मुतल्लिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसवदा पेश कर दिया कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसवदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा वजीर आजम ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे विभागों ने लगातार

0: मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वजीर आजम ने कहा कि पेपर लीक होने के वाकये के बाद से गुज़श्ता ढाई महीने के दौरान कई इकदामात किए गए हैं। उसूलवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल जाये न हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना जरूरी था।
0: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अख्तियार करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 2024 के तहत केसों की समाअत के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। इस इकदाम का मकसद इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों से मुतालिक मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नई तश्कील दी गई फास्ट ट्रैक अदालत जुडिशियल अफसर अनु ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अदालत इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए केसों और दीगर मुतालिका मामलात की समाअत करेगी। मस्कुरा इकदाम का मकसद इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों के इस्तेमाल से वाबस्ता मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। इम्तहान के पर्चे लीक होने के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तेजी के साथ सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के मरकज के फैसले के बारे में वजीर आजम के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सरगम कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 रोज के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पार्लियामेंट के 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे या भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए खतों पर दस्तखत कर चुके थे। जनाब वांगचुक ने कहा कि मुख्तलिफ सूरतेहाल पर तवील बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का तशद्दुद न होने देने के लिए हर किसी से बहुत मुस्तैद रहने पर जोर दिया। जनाब वांगचुक ने निजाम तालीम में इस्लाहात और पेपर लीक के सिलसिले में जवाबदेही तय करने के मुतालबात करते हुए पिछले महीने की 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान से काम करने वाले उन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है जो एक मुनज्जम तरीके से गलत जानकारी फैलाने की मुहिम में मुलव्वस थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवानों को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलव्वस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें।
3: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट

0: लालबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने अलबत्ता यह भी कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी, जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानों की वजारत जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ के गैस टर्बाइन तहकीक ई इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में यह कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने तवील दूरी के जमीन से फिजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। यह तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि यह पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिसाइल निजाम लड़ाका जेट, हवाई जहाजों, मिसाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए डीआरडीओ और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकतदारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामाने और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 वर्ष में बाहमी तिजारत को दोगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कान पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जरई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में एक हफ्ते के कयाम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी

0: वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वजीर आजम मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वो सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जरूरी इमदाद फराहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफे अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरे मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे भीमप्पा भजनंतरी तथा अल एहसान रशीदी द्वारा गायन राग नटभैरव। साथी कलाकार रहेंगे सारंगी पर नफीस अहमद और तबले पर इरफान हुसैन खान। आइए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने सुना भीमप्पा भजनंतरी और अल एहसान रशीदी द्वारा गायन राग था नट भैरव। साथ ही कलाकार थे सारंगी पर नफीस अहमद और तबले पर इरफान हुसैन खान। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर विचार, आलेख एवं स्वर अभय प्रताप।
1: सत्य और अहिंसा गांधी जी के संपूर्ण जीवन और दर्शन का आधार है। उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही उनका ईश्वर है अर्थात साध्य है, और अहिंसा ही उसे प्राप्त करने का साधन है। हालांकि वे खुद कहते हैं कि सत्य और अहिंसा सदियों से चले आ रहे सिद्धांत हैं। उन्होंने केवल इन्हें जीवन और उसकी समस्याओं पर लागू भर किया है, लेकिन उन्होंने इन शब्दों के जो अर्थ निकाले, जो व्याख्याएं की, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी सत्य के निरंतर अन्वेषक थे। उनका जीवन सत्य के प्रयोगों की एक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें सत्य मिल गया है। उन्होंने कहा कि वे सत्य की खोज में निरंतर लगे रहेंगे। उनके लिए सत्य एक आदर्श था जिसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन अनंत होने के कारण यह निरंतर दूर होता चला जाता था। गांधी जी ने ईश्वर को सत्य का पर्यायवाची माना। उन्होंने कहा, ईश्वर सत्य है, लेकिन अंततः उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, और उसी का प्रचार प्रसार किया। जब देखा कि ईश्वर को नकारने वाले तो बहुत हैं, परंतु सत्य को नकारने का साहस किसी में नहीं, अतः सत्य ही सर्वोपरि है, वास्तविकता का द्योतक है। वे मानते हैं कि सत्य जंगलों या पहाड़ों पर मिलने वाली चीज नहीं है, यह तो संसार में रहते ही संभव है। यदि व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द में सहायक हो जाए तो सत्य के स्वयं ही दर्शन हो जाएंगे। गांधी जी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बुराई और अन्याय के आगे आत्मसमर्पण न करें। किसी भी कारण से बुराई के आगे आत्मसमर्पण करना नैतिक और आध्यात्मिक मृत्यु है। वे संख्या की कमी या शक्ति की कमी का बहाना बनाने की अनुमति नहीं देते। वे चाहते हैं कि मनुष्य बुराई से लड़े, परंतु बुराई या हिंसा के जरिए नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और कष्ट सहने

की क्षमता विकसित करके लड़े। गांधी जी सत्य की अनुभूति मात्र से संतुष्ट नहीं थे, वे सत्य को जानने, उसे साकार करने, उसे प्राप्त करने और उसे स्थापित करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। वे सत्य का राज्य चाहते थे। उन्होंने कहा है, सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं चलता, तो फिर वह कहाँ चलता है? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी कीमत की चीज नहीं है। जीवन में उसका उपयोग ही क्या रहा? मैं तो जीवन के हर एक व्यवहार में उसके उपयोग का नित्य नया दर्शन पाता हूँ। उन्होंने हमेशा तथ्यात्मक सच के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज और नैतिक मूल्यों को सत्य माना। उनके लिए सत्य का उद्देश्य अपराधी को शर्मिंदा करना नहीं बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना है। सत्य पर आधारित सत्याग्रह पूरी दुनिया को महात्मा गांधी की अनोखी देन है। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सत्य की शक्ति पर बल देने वाले विभिन्न सत्याग्रहों का आयोजन किया। इसके पहले वे दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे कई प्रयोग कर चुके थे। सत्याग्रह, जिसमें सत्य का अर्थ सत्य और आग्रह का अर्थ दृढ़ता है, सत्य के मार्ग पर चलने का संकेत देता है। वह सत्य का प्रदर्शन है जो प्रतिशोध नहीं चाहता, उत्पीड़क की अंतरात्मा को जगाकर उसे सत्य का दर्शन कराता है। यह दुर्बलों का हथियार नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल बलवानों के पास होती है। इसमें न तो घृणा का भाव है और न ही विनाश का। यह मानता है कि उत्पीड़क शत्रु नहीं है बल्कि केवल सत्य से विमुख है और उसे सत्य जानने के लिए राजी किया जा सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक हानि न पहुंचाना आदि। गांधी जी कहते हैं, अपने सकारात्मक और व्यापक अर्थ में अहिंसा प्रेम और करुणा की सक्रिय शक्ति है। यह असीम प्रेम और परोपकार को दर्शाता है। इसमें बैर भाव का त्याग है। अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। अतः सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं, जो हमें प्रेम करता है उससे भी हम प्रेम करें, यह अहिंसा नहीं। अहिंसा तो तब है जब अपने विरोधी शत्रु या अपने से विद्वेष रखने वाले को भी प्रेम करें। अहिंसा में दीनता भीरुता बिल्कुल न हो, डर कर भागना भी नहीं होना चाहिए। अहिंसा में दृढ़ता वीरता तथा निश्चलता होनी चाहिए। अहिंसा कायर का कवच नहीं है, बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा शांति का अमोघ अस्त्र है। सत्य और अहिंसा के मेल से आप संसार को अपने चरणों में ला सकते हैं। गांधी जी मानते हैं कि सत्य उन्हें स्वाभाविक रूप से मिला, लेकिन अहिंसा को उन्होंने एक संघर्ष के बाद पाया है। अहिंसा का मतलब त्याग भी है। अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की नहीं। यही कारण है दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। निजी जीवन में अहिंसा और बाहरी जीवन में हिंसा, ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। उनका जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा के पालन का आग्रह है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र की परिधि से निकालकर इसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सभी प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करने का शस्त्र बनाया। इसे सार्वजनिक और सार्वभौम बनाया। सिर्फ राज व्यवस्था ही नहीं, संपूर्ण विश्व व्यवस्था को अहिंसा आधारित बनाने की उनकी कल्पना थी। वे कहते हैं, अहिंसा अगर व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है, वह करोड़ों की है। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं है, वह समुदाय जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। अभी हमने यह सिद्ध नहीं किया है लेकिन यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। मेरा तो यही स्वप्न है, इसी को मैंने अपना कर्तव्य माना है। चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी श्रद्धा इतनी गहरी है, इसे सिद्ध करने के लिए ही मैं जीऊंगा और उसी प्रयत्न में मरूंगा। उन्होंने कहा, मुझे तो अहिंसा के सिवाय कोई दूसरा कुछ नहीं दिखता। मुझे विश्वास है कि अहिंसा की सदा जय होती है।

0: दिन यह प्रतीति हो जाएगी कि अहिंसा निष्फल है, उस दिन मेरे लिए मृत्यु ही विराम स्थान होगा। उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि भारत यह महसूस कर ले कि उसमें ऐसी आत्मा है जो कभी भी मर मिट नहीं सकती। वह शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर तमाम दुनिया की सारी शारीरिक ताकत को चुनौती दे सकती है और विजय प्राप्त कर सकती है। अहिंसा अचूक है, वह कभी नाकाम नहीं जाती। गांधी जी का दृढ़ मत था कि अहिंसा ही सत्य तक पहुंचने का सर्वोत्तम, सबसे सरल और एकमात्र मार्ग है। वे लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साधन सिर्फ साधन ही है। मैं कहूंगा कि साधन ही सब कुछ है। जैसा साधन होगा उसी तरह का फल मिलेगा। उद्देश्य की प्राप्ति उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में हम साधनों की शुद्धता पर ध्यान देंगे। केवल अहिंसा के माध्यम से सत्य की खोज या साधना उन्हें सत्य के अन्य अनुयायियों से अलग करता है। गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के विचार मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि सत्य सबसे बड़ी शक्ति है और अहिंसा सबसे प्रभावी साधन। इन सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा विश्व को शांति और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के जरिए राष्ट्रीय नैतिकता को नई ऊंचाई दी। इससे संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ा और विश्व को सत्याग्रह का नया शस्त्र मिला तथा मानवता का एक नया पैमाना मिला।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर विचार। आलेख एवं स्वर अभय प्रताप।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोताओं सुबह के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

ऐसा कम तेरी सनात के लिए और सलामी देती है तेरी रबूबियत को नमाज, सलामी देती है तेरी रबूबियत को नमाज, बुलंद अज़ा का भी परचम

ناز نہ ہو اپنی گدائی پہ مجھے بھی.

0: বক্তা সমাজ শোনায়, বশিষ্ঠ মোহাম্মদ কিয়ে মেরাজ হ্যায় অফজল।
1: Tax compliance and acknowledge taxpayers' contributions to national development.
2: और तन्वी हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि इस सोमवार को हमने अपने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा भी प्रसारित की थी, तो इससे जुड़े जो भी आप प्रश्न हैं, अगर आप दोबारा सुनना चाहते हो, किस तरह की समस्या आपको है ITR भरने में, कि ये कब भरी जाएगी, कैसे भरी जाएगी, तो आप ये परिचर्चा सुन सकते हैं। आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: Wonderful, and there is one more day that we are celebrating today, and that is International Self-Care Day. So Farhat, we all take care of ourselves and we take care of our hygiene and what not, right?
2: Bilkul, apna khas khayal rakhenge agar aap, tabhi aap apne aap ko behtar aur khoobsurat mehsoos kar sakte hain.
1: True, it is observed annually on 24th of July to promote personal health habits 24 hours a day, 7 days a week. Self-care is any action that

हुई फ्रांस के ट्रिकेस्टियन परमाणु संयंत्र में हुए रिसाव से लगभग 100 व्यक्ति प्रभावित हुए। और अब आइए हम अपने आखिरी सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। लेट्स बिगिन विद द बिग नेम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मनोज कुमार। यस, हिज रियल नेम इज हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस नेम, बट यू ऑल डेफिनेटली नो मनोज कुमार, एन इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन। मनोज कुमार रिमाइंड्स अस ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, सो लेट्स जस्ट हियर देम आउट। जी बिल्कुल।

मनोज कुमार ने लोगों को देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया। मनोज ने शहीद जैसी कालजयी फिल्म में देश के इस अमर सपूत के किरदार को जीवंत करने की प्रेरणा दी थी।

0: पे हम भेंट।
1: 1992 में मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। तो क्यों ना सुन लेते हैं फिल्म क्रांति से उनका ये गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में।

मनोज कुमार ने वो कौन थी, हिमालय की गोद में गुमनाम, दो बदन, पत्थर के सनम, यादगार, शोर, सन्यासी, दस नंबरी और क्लर्क जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया, तो क्यों ना फिल्म हिमालय की गोद में से ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

अभी इसके दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवानों को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलविस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहत से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारा खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरियट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने अलबत्ता ये भी कहा कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरियट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी, जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत, जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अंदरूनी मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ के गैस टर्बाइन तहकीक इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तयाबी से मुल्क की दिफाई सनअत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनअती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई वर्षों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने तवील दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि ये पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदब को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिसाइल निजाम लड़ाका जेट हवाई जहाजों, मिसाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए डीआरडीओ और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि ये कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। जनरल राजनाथ सिंह ने इस बात को उजागर किया कि तवील दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल निजाम तैयार करने की सलाहियत सिर्फ चंद मुल्कों के पास है। भारत और रोमानिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसोर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। ओडिशा के पवित्र साइली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुदा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर में एक हफ्ते के क्याम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना रथ यात्रा एहतमाम पजीर हो जाएगी। इसमें दौलत मुश्तका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम

0: वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। हमारी नशरियात जारी है। पेश है अखबारी जरी का प्रोग्राम शमी फरोजा।
2: उखुवत हर किस्म की समाजी, सियासी, मुल्की, कौमी, जात पात और बरादरी की तफरीक से बुलंद होकर तमाम बनी नौ इंसान को एक इंसान की नजर से देखने का जज्बा है। ये जज्बा इस नुक्ते नजर से पैदा होता है कि तमाम इंसान बहैसियत इंसान एक दूसरे के भाई हैं। वो एक बड़े इंसानी खानदान का हिस्सा हैं। ये जज्बा इंसान को हर तफरीक से बालातर होकर सबको इंसानी हमदर्दी के साथ न सिर्फ देखने बल्कि अमली तौर पर भी हर इंसान से मोहब्बत करने, उसके तई खैरखाही रखने और जरूरत और मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करने की तरगीब देता है। सच्ची उखुवत दिल की गहराई से इंसान को दूसरों के लिए भलाई करने पर उभारती है और दूसरों की तकलीफ दूर करने की तरगीब दिलाती है। इस उखुवत का हमसे मुतालबा है कि हमारे अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा हो, आपस में प्यार और मोहब्बत हो, नरमी और बर्दाश्त का मादा पाया जाए। चाहे आपस में नजरियात का कितना ही इख्तलाफ क्यों न हो, अपने सीने को दूसरों के बारे में कीना, बॉक्स और अदावत से खाली रखा जाए। जिस इंसान में उखुवत का जज्बा होता है वो न किसी को हकीर समझता है, न ही किसी को जलील करता है और न ही किसी पर जुल्म ज्यादती को रवा रखता है। उखुवत और भाईचारा किसी भी साले मुआशरे के कयाम के लिए नागुजीर है। दुनिया को उखुवत और भाईचारे की जितनी जरूरत आज है शायद ही तारीख के किसी और दौर में रही होगी। आज जिधर देखिए दुनिया में बदमनी का दौर दौरा है। दुनिया का शायद ही कोई खित्ता ऐसा होगा जहां मजहबी, मसलकी, इलाकाई, सियासी और नजरियाती मुनाफरत की बुनियादों पर जंगो जदाल, तशद्दुद और फसादात, कत्लो गारतगरी और कुश्त खून का बाजार गर्म न हो। आज किसी एक मुआशरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खानदान, कबीले, रंगो नस्ल और कौमी तफाखुर ने इंसानों को बेशुमार फिरकों में तकसीम कर दिया है और हर फिरका अपने आप को दूसरे फिरकों से बालातर समझते हुए उनकी तमाम तर खूबियों का मुनकिर हो जाता है। दूसरी जानिब सियासी और नजरियाती इख्तलाफात हैं जिन्होंने इंसानों की तकसीम दर तकसीम करके उन्हें और ज्यादा ग्रोहों, गुटों और धड़ों में बांट दिया है। आज न सिर्फ हथियारों के दम से कुश्त खून किया जा रहा है बल्कि जबानो कलम से भी दुनिया भर में नफरत अंगेजी की जा रही है। अगर आज ये तमाम खराबियां और बुराइयां न होती तो इंसानी माशरा पूरी तरह अदलो इंसाफ और मसावात की बुनियाद पर कायम होता और कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता, खुशहाल और पुरान होता। ऐसा नहीं कि आज दुनिया में उखुवत और भाईचारा नापेद हो चुका है। दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में ऐसे बेशुमार अफराद, तंजीमें और इदारे आज भी मौजूद हैं जो हर किस्म की असबियत से ऊपर उठकर महज इंसानी हमदर्दी और उखुवत के जज्बात से मामूर होकर हर तरह के लोगों की बिला तफरीक खिदमत और मदद करते हैं। दुनिया ऐसे अफराद और इदारों से कभी खाली नहीं रही जिन्होंने उखुवत और भाईचारे की आला मिसालें पेश करके इंसानियत में भरोसे और एतमाद को कायम न रखा हो। यूं तो दुनिया में उखुवत और भाईचारे की मिसालें हर दौर में सामने आती रही हैं, लेकिन एक ऐसा जर्री बाब भी है जिसकी नजीर पेश करने से तारीख आलम आज तक कासिर है। मुआखात अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी भाईचारे के हैं। हिजरत मदीना के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार के दरमियान मुआखात का रिश्ता कायम किया था। तारीख इस्लाम में ये रिश्ता मुआखात मदीना के नाम से मशहूर है। आज भी दुनिया में इत्तेहाद और यगानगत के रिश्ते और अमन आश्ती को कायम करने के लिए उखुवत और भाईचारे की जरूरत और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ दिल में दूसरों के लिए अच्छे जज्बात रखे जाएं, बल्कि अमली तौर पर भी दूसरों के लिए ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा किया जाए और उखुवत और भाईचारे की अमली मिसालें पेश करके बदमनी और इंतशार में मुबतला इस दुनिया को गहबारे अमन और सलामती बना दिया जाए।

0: से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
1: जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर की बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम लेकर के चल ही रहे हैं?
0: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक है, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली चीज कैसे होंगी मैं आपको उसमें बताता हूँ। देखिये, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड उनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 हजार मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी, 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाए, तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशन को खत्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशन हो सकते थे उन्हें खत्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी तो उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, तब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, आपको खुद का वन ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको बनाने, तो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, जो मैंने बताया जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके यही देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर मिशन काम कर रहा है, और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रिवन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों को साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोडमैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
0: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री, जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी थी, और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जैसे कहना चाहिए हमारे

0: हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीजों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात यह कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, ये सब बहुत बड़े काम है। इसमें अंतरदेशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है।
1: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।
0: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है और ये भारत की ही पहल पर बना और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तक 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं और जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, तो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: मेहमान जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसे कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चलकर के जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
0: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियो पॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना, वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखिए कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है, किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं, और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफ टॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि न सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है, लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
1: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल, पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर के जो उपकरण है, इन्हें घरेलू स्तर पर अगर बढ़ावा मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
0: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड

0: वाइड एप्लीकेबिलिटी और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, एमएनआरई की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें छोटे स्टार्टअप्स नए नए आइडियाज को भी समर्थन, न कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
0: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए। लेकिन कुछ जो कार है जैसे गाड़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
1: रेहन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में सामईन हम लेकर आए हैं अदाकार मनोज कुमार पर फिल्माए हुए कुछ नगमे। आज है उनका यौम पैदाइश और हम पेश कर रहे हैं उन्हें खराज अकीदत।

Oh,

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज के प्रोग्राम में हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं बॉलीवुड के अजीम अदाकार हिदायतकार मुसन्निफ और फिल्म साज जिन्हें पूरी दुनिया भारत कुमार के नाम से भी जानती है। मनोज कुमार ने न सिर्फ अपनी शानदार अदाकारी से लाखों करोड़ों दिल जीते बल्कि अपने हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों के जरिए कौम परस्ती समाजी शऊर और कौमी यकजहती का पैगाम भी दिया। आपने भी देखा होगा कि उनकी ज्यादातर जो फिल्में हैं उनका जो मरकजी ख्याल है वो वतन परस्ती ही हुआ करता था। मनोज कुमार का असली नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था और आज ही के दिन यानी 24 जुलाई को सन 1937 में वो पैदा हुए थे अहमदाबाद में जो कि अब पाकिस्तान में है। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान दिल्ली मुंतकिल हो गया था और बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बेहद शौक था। वो अजीम अदाकार दिलीप कुमार से बेहद मुतासिर थे और इसी मोहब्बत में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखते हुए अपना नाम मनोज कुमार रख लिया था।

तो बस मुकरती हूँ।

मुझे सताया है, एक लड़की है, एक लड़की है।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद और आज हम आपको सुनवा रहे हैं अदाकार मनोज कुमार पर फिल्माए हुए कुछ फिल्मी नगमे। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था सामाइन सन 1957 से, फिल्म थी फैशन, लेकिन कुछ खास तो नहीं कर पाई थी ये फिल्म। असल पहचान या असल शोहरत की अगर बात की जाए तो फिल्म थी हरियाली और रास्ता, जहां से उन्हें काफी शोहरत मिली और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में हमें दी हैं, जिनमें अगर हम बात करें शहीद है, उपकार है, पूरब और पश्चिम, शोर, बेईमान, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, क्रांति, दो बदन वगैरह काबिले जिक्र हैं। ये तमाम फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल कर पाई बल्कि आवाम के दिलों में भी मनोज कुमार को एक खास मुकाम मिल गया था।

बाबू ने नादानी, देख कर

धरती पर

आज के मेरे पसंद प्रोग्राम में सामीन आपने सुनी मनोज कुमार पर फिल्माए हुए कुछ फिल्मी नगमे। अब आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। मुझे अब सुनिए डॉक्टर शमीम हनफी का तहरीर करदा एक ड्रामा जिसका उन्वान है नींद। पेशकश है प्रेम वोहरा की।

0: मामी मामिया दरवाजा खोलो बेटे बेटे दरवाजा खोलो बेटी सामिया
1: बापा जी
0: कितनी बार कहा दरवाजा अंदर से मत बंद किया करो तू सोते में अक्सर डर जाती है
1: सोते में
0: हाँ बेटी और नहीं तो क्या दरवाजा खोल कर सोया करो हमेशा
1: सोया करो
0: ओहो हाँ हाँ हाँ दरवाजा खोल कर सोया करो बेटी अंदर से चिराखनी मत लगाया करो तुम सोते में अक्सर डर जाती हो बेटा
1: मगर अब्बा जी मैं सोई कहाँ हूँ
0: अरे और लो तुम सो नहीं रही थी ख्वाब में डरी नहीं थी चीखी नहीं थी तुम
1: मैं सो नहीं रही थी अब्बा जी

0: हंसी मजाक की।
1: अजीब बात है।
0: कौन सी बात?
1: तुम नहीं समझोगी बिट्टो। अच्छा है एक लिहाज से कि तुम ना समझो। सुहेला, सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए।
0: पहेलियां ना बुझाओ आसिम भाई।
1: जो उदास रहता है वो तो है ही। तुम कहती हो जो ऊपर से हंसता है वो भी उदास है। अब्बू जी, सादत चचा, सामिया, उदासी एक मौसम है, सारी इंसानी बस्तियों पर फैलता हुआ, एक एक को अपने साय में समेटता हुआ।
2: अरे सुहेला, आसिम।
0: आई अबू।
2: जरा देखो तो कौन आया है।
0: अरे साम्या बाजी, आदाब।
3: आदाब, कैसी हो सुहेला?
0: ठीक हूँ।
2: और भाभी बेगम कहाँ है? उन्हें भी बता दो ना कि सानिया आई है।
0: जी, वो बावर्ची खाने में है, आसिम भाई का नाश्ता बना रही हैं।
2: नाश्ता? इस वक्त नाश्ता?
0: जी।
2: कुछ खबर भी है जिन कितना चढ़ाया है। सामिया बेटी।
3: जी चाचा।
2: तुम अब यहीं रहो, जब तक जी चाहे रहो, जी न चाहे जब भी रहो। भाई सादत हुसैन की फिक्र छोड़ो, मैं सुबह शाम उनकी खबर लेता रहूंगा।
4: सामिया, आ गई मेरी बेटी। अब तो जरा तुम्हें गले लगा लू, आंखें तरस गई तुम्हें देखने को।
3: आदाब चची अम्मी।
4: जीती रहो बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे मैं तो कब से जोर दे रही थी नासिर मियां पर कि तुम्हें बुलाएं कुछ दिनों को।
2: तो मैंने आपके हुक्म की तामील कर तो दी भाभी बेगम।
4: हाँ हाँ, सादत भाई अकेले, यहाँ तुम अकेले। दुल्हन बेगम के उठते ही इस घर पर जैसे सन्नाटा छा गया। आसिम अपने कमरे में बंद रहते हैं, एक सुहेला के दम से जरा रौनक रहती है। सुहेला ना हो तो मेरा तो सांस लेना दूभर हो जाए।
2: आप भाभी बेगम, आप भी तो बहुत अकेली हैं। आपने इस घर के लिए कितना किया है, क्या कुछ कर रही हैं। ये घर आप ही की वजह से तो घर लगता है भाभी बेगम।

0: जी बातें आसिम, सोचूं तो कितना अजीब लगता है।
1: कुछ भी अजीब नहीं है सामिया, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। कई दिनों में ये बस्ती कितनी खामोश थी। कच्ची सड़कों पर इक्का दुक्का राहगीर, जीते जागते लोग परछाई जैसे दिखाई देते थे। अब शोर बहुत है
0: अंदर भी और बाहर भी। सचमुच बहुत शोर है।
1: वक्त का दरिया बहता रहता है इस सिमटी सिमटाई नदी की तरह। तुम जिसकी लहरें गिनती रहती हो अपनी खिड़की से आंखें लगाए।
0: अम्मी के इंतकाल के बाद से अब्बा जी बहुत चुप रहने लगे हैं। इस घर में हर वक्त आठों पहर उनकी खामोशी गूंजती रहती है।
1: और हमारे घर में चची अम्मी के बड़बड़ाने की आवाज, उनकी डांट डपट एक पल को भी चुप होने में नहीं आती। और अब्बू हंसते रहते हैं, सुहैला को छेड़ते रहते हैं। मगर मुझे पता है चची अम्मा की लगातार डांट डपट की तरह अब्बू की हंसी का भी सिर्फ एक मतलब है।
0: क्या?
1: वही लंबी चुप जिसने सादत चाचा को घेर रखा है और तुम्हें घेर रखा है।
0: और तुम?
1: मुझे भी घेर रखा है।
0: ऐसा क्यों है आसिम?
1: ऐसा इसलिए है कि हम खुद भी घिरे रहना चाहते हैं। तुम्हारे अब्बा जी ने दूसरी शादी नहीं की, हमारे अब्बू ने भी ऐसा ही फैसला किया। तुम्हारी खातिर, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी खातिर सादत चाचा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे।
0: और नासिर चाचा?
1: हाँ, अब

0: बाबू को सुहेला की और मेरी फिक्र थी। वो तो कहो कि चची अम्मा हमारे घर आ गई बड़े अब्बा के इंतकाल के बाद, वरना शायद हमारा घर और तुम्हारा घर दोनों एक जैसे होते।
1: तो क्या ये दोनों घर एक जैसे नहीं है
0: सामिया?
1: नहीं नहीं, पहले तुम बताओ कि ये दोनों घर एक से नहीं है।
0: सामिया, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं सामिया।
1: मेरे लिए?
0: हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: क्यों?
0: क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं।
1: ऐसी बातें ना करो कि मुझे रोना आ जाए।
0: मैंने आज से पहले तुम्हें कभी बताया नहीं, बता देना चाहता था जब भी नहीं बताया। पिछले बहुत बरसों से जब से मैंने तुम्हें जाना है मैं तुमसे मोहब्बत करता आया हूं सामिया।
1: ओ, मेरे खुदा।
0: तुम रो रही हो सामिया? देखो मैं कितना परेशान हूं तुम्हारे लिए, आज से नहीं पिछले बहुत बरसों से तुम्हारे लिए परेशान हूं।
1: किस लिए?
0: इसलिए कि तुम बहुत अकेली हो, सादा चचा बहुत अकेले हैं, ये घर बहुत अकेला है। यहां रहते रहते तुमको अंदाजा नहीं कि तुम अंदर ही अंदर कितनी सिमटती जा रही हो। ये भी तो सोचो कि हमारी दुनिया हमारे अंदर ही नहीं बाहर भी होती है, बस्तियां आबादियां शहर और कस्बे और बाग और बन।
2: सामिया
1: बच्चे आ गए शायद।
2: ओहो सामिया, तुमने तो हमें थका दिया बेटा। और आसिम मियां, तुमने भी नहीं रोका इसे?
0: रोका था चचा मियां, बहुत रोका था। सुहेला ने और चची अम्मी ने और अब्बू ने, सब ने रोका था।
2: फिर
0: सामिया को यही जिद थी कि शाम से पहले घर वापस आ जाएं।
2: मैं तो 4 बजे करीब इस ख्याल से तुम्हारी तरफ गया था कि नासिर मियां से मिल लूंगा, सामिया से मिल लूंगा, घड़ी दो घड़ी वहां बैठूंगा फिर लौट आऊंगा। मगर वहां पहुंचते ही पता चला कि तुम सामिया को पहुंचाने के लिए निकले हो। भाभी बेगम ने रोका, नासिर ने रोका, मगर मैं उल्टे पांव वापस चल पड़ा।
1: लगता है अपने ठिकाने से दूर तेज हवाओं में फंस गया है।
2: कौन फंस गया है बेटा?
1: परिंदा।
2: परिंदा? कौन सा परिंदा?
1: अभी जिसकी चीख सुनाई दी थी।
2: सामी बेटे, सामिया।
1: चिप बची।
2: कितने खुश थे नासिर मियां जब तुम उनके साथ जाने पर रजामंद हो गई थी। कहते थे कम से कम हफ्ते भर तो तुम वहां रहोगी, वहां सुहेला है, भाभी बेगम है और आसिम है। और बेटा फिर एक न एक दिन तुम्हें वहां जाना ही है।
1: बच्ची
0: मुझे इजाजत है चाचा मियां।
2: ओ हाँ, तुम जाना चाहते हो आसिम, ठीक है। चाय पीना चाहो तो रुको।
0: जी चाय की ख्वाहिश नहीं है चाचा मियां।
2: कोई बात नहीं, ठीक है, कल फिर आना।
0: जी चाचा मियां, आदाब।
2: जीते रहो। ये तुमने अच्छा नहीं किया सामिया।
1: जी अब्बा जी।
2: तुम्हें वहां रुक जाना चाहिए था, हफ्ते भर के लिए ना सही, एक दो रोज के लिए ही सही।
1: जी
2: देखो बेटी, मैंने उस घर में जाने से, आसिम से मिलने से तुम्हें कभी नहीं रोका। भाभी बेगम, नासिर मियां, सुहेला, सबके सब तुम्हें कितना चाहते हैं। नासिर कब से दौड़ते रहे हैं तारीख मुकर्रर करने के लिए। मैंने सोचा था तुम बचपन से उस घर में आती जाती रही हो। आसिम की अम्मी के जमाने तक तुम कितनी बार वहां जाकर रही थी, तुम्हारी अम्मी ने भी कभी नहीं रोका और तुम कितनी खुश रहती थी वहां। तो मैं नासिर मियां से मिलकर तारीख तय कर लूं?

0: साम्या, इतना छोटा खत पहले कभी नहीं लिखा था।
1: शायद आगे भी नहीं लिखूंगा। तुमने ठीक ही फैसला किया और तुम्ही ने तो कहा था कि बेदारी और तन्हाई एक ही सच के दो अलग अलग नाम हैं। दो अकेले इंसान मिलने के बाद भी अकेले ही रहते हैं। अकेलापन तो एक एहसास है, एक रवैया। कोई किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाए तो भी अकेलापन खत्म तो नहीं हो जाता। अकेलेपन की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। ठीक है,
0: मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं आसिम।
2: सामिया, सामिया बेटे, बेटे सामी, ये कैसी आवाज थी बेटा? तुम कुछ पढ़ रही थी क्या?
0: जी, आसिम का खत था।
2: आसिम का खत? क्या हुआ बेटी, मुझे पूरी बात बताओ।
0: हम दोनों ने अकेले रहने का फैसला कर लिया है, शादी न करने का।
2: ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सामिया?
0: जी,
2: मगर तुम तो कहती थी कि तुम्हें आसिम पसंद है।
0: जी,
2: और आसिम भी कहता था, यही कहता था। मिसे भाभी बेगम ने, नासिर ने, सुहैला ने, सबने यही कहा था।
0: जी
2: जी जी जी, तुम साफ क्यों नहीं बताती बेटी? तुम्हें नींद तो नहीं आ रही?
0: नींद? नींद तो पूरी हो चुकी, कब की पूरी हो चुकी।
2: ओ, खुदा के लिए सामिया पहेलियां ना बुझाओ।
0: हम दोनों ही शायद ख्वाब देख रहे थे और नींद में थे, और जो कुछ हुआ वो सब कुछ गैर हकीकी था
2: सामिया।
0: और अब नींद टूट चुकी है और मैं जाग रही हूं। अब उस ख्वाब की परछाई भी बाकी नहीं रही। हम नींद में एक दूसरे को ढूंढते फिरते हैं और जागते हैं तो हम सब अपने आप को अकेला पाते हैं।
2: सामिया,
0: आप जाइए अब्बा जी और सो जाइए, और परेशान ना होइए मेरी खातिर। और नासिर चाचा से भी कह दीजिए वो भी परेशान ना हो। जाइए, सो जाइए। हवा का शोर भी अब थम चुका है, मैं जाग रही हूं। जाग रही हूं मैं।

0: डॉक्टर शमीमा नफी का तहरीर करदा ड्रामा सुना उनवान था नींद। पेशकश थी प्रेम वोहरा की। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। ट्रंप इंतजामिया ने जबरन मजदूरी के मामले पर भारत समेत 17 मुल्कों से होने वाली दरामदात पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। फ्रांस में जंगलाती इलाके में आग लगने के तनाजुर में 20,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। बहर अहमर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हौसियों ने हमला किया है। इधर अमेरिका ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए। और 23वीं दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और रोमानिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक के खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हम मनसब निकोसोर डैन के दरमियान वफद सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया वर्षों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बामी तजारत को दोगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुआहदा सनअतों और हुनरमंद पेशेवर अफराद के लिए बेशुमार इम्कान पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जरई पैदावार, खाद, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और मसनूई जहानत जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के खातिर मुतल्लिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसवदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसवदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा।

और इन मुकदमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसविदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसविदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मजकूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेपर लीक होने के वाकये के बाद से गुज़श्ता ढाई महीने के दौरान कई इकदाम किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल जाया न हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहान कराना जरूरी था। भारत में अंदरूनी मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डी

से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीकी इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनअत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनअती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में जीने की राह फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए। फिल्म है हरियाली और रास्ता।

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
1: शहर बनारस कई एतबार से लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। जहां इस शहर को मजहबी मकाम का दर्जा हासिल है, वहीं शहर तहजीब व सकाफत का ऐसा गहवारा है कि सयाहों की तवज्जो का हमेशा से खास मरकज रहा है। सुबह बनारस से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर साल यहां लाखों की तादाद में सयाह आते हैं और लोग इस शहर का सफर करते हैं। फनकारों के लिए भी ये शहर जाना और पहचाना जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का बनारस घराना इसी शहर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान के कई अहम और अजीम फलसफी, शायर और मुसन्निफिन का ताल्लुक इसी शहर से है, जिनमें कबीरदास, रविदास, मालिक रामानंद, स्वामी नंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्ला खां वगैरह के नाम बतौर खास अहमियत के हामिल हैं। तारीखी तनाजुम में देखा जाए तो बनारस हिंदुस्तान में तालीम का मरकज रहा है। ये शहर मुल्क भर से तालीब इल्मों और उलमा को अपनी जानी मुतवज्जो करता रहा है। इस शहर में कॉलेजों और जामियात की एक बड़ी तादाद है। इनमें सबसे अहम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है।

0: इस यूनिवर्सिटी की एक अहम बात यह है कि इसमें 20,000 से ज्यादा तलबा के लिए दारुल अकामा का इंतजाम है। रिहायश के एतबार से यह इदारा एशिया के बड़े इदारों में से एक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, 1896 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से इसे कायम किया था। नरेश कामेश्वर और पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह एनी बेसेंट ने भी हिंदू यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था, जिसका कायम 1916 में अमल में आया। मदन मोहन मालवीय और दूसरे अहम लोगों ने अपनी मेहनत और कोशिश से इस इदारे को कायम किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कायम के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और उनके रुफका ने 1904 से कोशिश की। इस यूनिवर्सिटी के लिए निजाम हैदराबाद ने कई लाख रुपए का अतिया दिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत से कॉलेजेस का इलाक है। यह इदारा पूर्वांचल के लोगों के लिए नेक फाल साबित हुआ। इसमें जहां मुल्क भर के तलबा तालबात इल्म हासिल कर रहे हैं, वहीं बैरूनी ममालिक के तलबा के लिए भी यह इदारा हमेशा से ही इल्म के लिए चाहत का मरकज रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क के तलबा व तालबात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी मुहक्किकीन के लिए गराकदर सरमाया साबित हो रही है। कदीम से कदीम किताबें इस लाइब्रेरी की जीनत हैं, जहां मखतूतात की भी एक अच्छी खासी तादाद है। लाइब्रेरी का क्याम 1917 में हुआ। 1941 में इस लाइब्रेरी को ब्रिटिश म्यूजियम के तर्ज पर बनाया गया। इस तर्ज पर लाइब्रेरी को बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन से वापसी के बाद मशवरा दिया था। जबान व अदब, तारीख व सकाफत, मजहब, साइंस व फलसफा, टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रूह है। पुरसुकून कैंपस में बैक वक्त हजारों की तादाद में तलबा व तालबात मुख्तलिफ कोर्सेज में अपनी इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। इस इदारे में 6 इंस्टीट्यूट और 14 फैकल्टीज हैं, जिसमें 140 के आसपास शोबे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फारगीन न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिक भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मुल्क के वकार में इजाफा कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी पंडित मदन मोहन मालवीय का यह मानना था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का भी मुल्क है। मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले आपस में भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्याम का मकसद भी यही था कि लोग आपस में मिलजुल कर एक छत के नीचे तालीम हासिल करें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्याम का एक मकसद यह भी था कि यहां से फारिग तहसील तलबा दुनिया में अपनी सलाहियत का जलवा बिखेर सकें, साथ ही एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें और मुल्क की तश्कील में अपना अहम किरदार भी अदा करें। जिस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में आया, उस वक्त हिंदुस्तान जंग आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। हमारे इन अकाबरीन ने मुल्क की तरक्की में तालीम को जरूरी समझा, इसलिए मुश्किल हालात के बावजूद इदारे कायम किए ताकि आइंदा की नस्लें तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो सकें। किसी भी मुल्क की तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए जब हम उस वक्त की तारीख का मुताला करते हैं तो अंदाजा होता है कि हमारे ज्यादातर तालीमी इदारे उसी वक्त कायम किए गए थे जो आज मुल्क की तरक्की में अपना गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन्हीं इदारों में से एक अहम इदारा है जो हमारी तहजीब और सकाफत का मजहर है, जहां बगैर मजहबी भेदभाव के लोग तालीम हासिल कर रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज, मौजूद था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तहरीर थी डॉक्टर नाजिया मुमताज की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था 1, 2 का 4 फिल्म से। अब सुनिए विशाल मिश्रा और नीति मोहन को, फिल्म है गदर 2।

0: में भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर हैं। तीन दशकों से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की बुखारेस्ट की पहली यात्रा का क्या महत्व है?
2: जी, जैसा आपने खुद कहा कि तीन दशक गुजर चुके हैं कि भारत के कोई राष्ट्रपति रोमानिया के दौरे पे जाए। पिछला दौरा हुआ था 1994 में, जब प्रेसिडेंट पंडित शंकर दयाल शर्मा जी वहां पर एक स्टेट विजिट पे गए थे, और इतना अच्छा गुजर गया है तो अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका वहां जाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों देशों की जो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसमें हमारा सम्मेलन हो रहा है। देखिए, भारत की आउटरीच सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति जी मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पे भी गए। इसके अलावा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक और सेक्टरल कोऑपरेशन। इससे जो भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ जो संबंध है इंडिया ईयू फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इनमें बहुत बढ़ाव होगा, इसको बहुत ज्यादा उससे अच्छे एक संस्करण मिलेंगे। तो जो राष्ट्रपति जी है वो इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को एड्रेस करेंगे। कल्चरल टाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे विचार में ये जो कल्चरल टाइज को बढ़ावा मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अभी आपने जैसा कहा अम्बेसडर दयाल कि अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू इंडिया रोमानिया बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, तो दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं?
2: मेरे विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स है कोऑपरेशन के लिए वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, तीसरा डिफेंस, और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी और साइंस। देखिए, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत जो है उसने काफी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जो रोमानिया में हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं वो हमें ऐसे एक स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे साबित
1: हो।
2: इसके अलावा जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, देखिए इस क्षेत्र में जो कॉम्पोरेशन है उसको आगे बढ़ाने की बहुत संभावना है। इसके अलावा डिफेंस में देखिए, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बहुत पूर्ण रूप को हम समझते हैं और उस पर बहुत हम एम्फेसिस देते हैं।
1: रोमानिया एक प्रमुख रीजनल टेक और आईटी आउटसोर्सिंग हब है, ये कम लागत वाला एक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है और ईयू में कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक भी है। तो अगर हम इन तीनों क्षेत्रों को देखें इससे भारतीय व्यवसायों को कैसे फायदा हो सकता है?
2: देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे की तरह साबित होता है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में, और एक बहुत एडवांस्ड हब जो टेक इनोवेशन के क्षेत्र में, और पार्टनर हमारे लिए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, इन सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इनकी अहमियत बहुत है। अब जैसे रोमानिया में कुछ प्रोडक्शन बेसिस लगाकर जो भारत की फर्म्स हैं उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो हाई टैरिफ्स हैं वो हम उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो रोमानिया है वो 16% कॉर्पोरेट टैक्स हमको देता है, बड़ा कंपेटिटिव है, और जीरो टैक्स देता है री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स पे। अब यहां तक टैक्स सेक्टर की बात है, देखिए रोमानिया में जो टेक सेक्टर है वो भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, स्मार्ट सिटीज बनाने में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और रोमानिया के पास एक अच्छी वर्कफोर्स है, स्किल्ड कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वर्कफोर्स है जो हमारी टेक फर्म्स के साथ कोऑपरेट करके दोनों का फायदा कर सकते हैं। जब आपने बात की एग्रीकल्चरल फूड टेक्नोलॉजी टाइप की, देखिए रोमानिया जो है वो एक बहुत स्पेशलिस्ट है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में, एग्री इंजीनियरिंग में, और फूड प्रोसेसिंग जो उसकी टेक्नोलॉजीज है, तो इन सब से भारत को फायदा होता है कि हम अपनी भी जो कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं। सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी जो बायलैटरल ट्रेड है इसको रोमानिया के सरप्लस प्रोडक्शन से फायदा उठाते हुए, जैसे कुछ क्रॉप्स है, सीड ऑयल्स है।

0: इन सब में मिलके हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉरिडोर बना सकते हैं।
1: रोमानिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन हब भी है और पश्चिमी यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक अहम ट्रांजिट पॉइंट है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एक जरूरी पहलू है, तो ऐसे में यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और व्यापार और निवेश के नए मौके बनाने की कोशिश कर रहे भारतीय बिजनेसेस के लिए बुखारेस्ट का क्या महत्व है?
0: जो रोमानिया है वो एक गेटवे भारत की बिजनेसेस के लिए, जो यूरोप में कंज्यूमर्स की संख्या है वो 450 मिलियन से ज्यादा है, तो अगर रोमानिया के थ्रू हमको एंट्री मिलती है तो हमारा बहुत फायदा है। देखिए रोमानिया के पास जो ब्लैक सी में सबसे बड़ा पोर्ट, उसके अलावा जो रोमानिया के पास लो कॉस्ट फ्रेट इनलैंड कॉरिडोर है डैन्यूब रिवर की वजह से, डैन्यूब रिवर से जो सामान है वो जल्दी पहुंच सकता है सेंट्रल यूरोप और साथ ही साथ कम दाम में। इसके इसी वजह से जो रोमानिया के पोर्ट है ये नॉर्थ यूरोपियन पोर्ट्स के जो क्राउडेड हैं उसमें चार्जेस भी ज्यादा हैं, उसमें शिप्स की संख्या ज्यादा है, इस वजह से ये जो रोमानिया का पोर्ट है ये हमको एक कॉस्ट और टैलेंट एडवांटेज देता है। और साथ ही साथ देखिए जो मल्टीलिंगुअल आईटी और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है रोमानिया के पास, उससे हमारी कंपनीज को बहुत सहायता मिल सकती है।
1: रोमानिया यूरोपीय संघ का एक सदस्य है और भारत और ईयू ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जो एक समझौता हो चुका है हमारा, तो इस भारत ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को और मजबूत करने में रोमानिया की क्या भूमिका हो सकती है, कितनी अहम भूमिका रहेगी?
0: मैं तो ये कहूंगा कि रोमानिया एक ऑपरेशनल कैटलिस्ट का काम कर सकता है
1: जी
0: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के संदर्भ में, क्योंकि रोमानिया की जो पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल पोजिशनिंग है ब्लैक सी पे, ये बहुत हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकती है जो ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के हमारी कंपनीज के लिए रोमानिया हमारी सहायता कर सकता है लोकलाइज प्रोडक्शन बढ़ाने में जो यूरोपियन सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट हो सकता है। तो मेरे विचार में ये जो बुखारेस्ट को हम उसके साथ जो कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम ये सोचते हैं कि बुखारेस्ट रोमानिया हमारी सहायता कर सकता है इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट में और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन में सब की सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इन सब में जो रोमानिया के पास एक स्किल बेस्ड लेबर पार्टनरशिप वो हमारे साथ काम करके जो वहां के हम लोगों को इस्तेमाल करके वहां के स्किल्ड प्रोफेशनल को इस्तेमाल करके अपने जो कंपनीज हैं उनके बेसिस वहां लगा के बहुत ये जो रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते।
1: भारत और रोमानिया की जो संबंधों की बात हो रही है तो 3 T's की बात हो रही है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। हमने ट्रेड की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की। राष्ट्रपति मुर्मू की रोमानिया यात्रा दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर को कैसे बढ़ावा दे सकती है?
0: राष्ट्रपति मुर्मू जी की जो ये विजिट है रोमानिया की, ये टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ये पीपल टू पीपल रिलेशंस है वो इसकी वजह से बहुत प्रोत्साहित हो सकते। देखिए कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप होंगी, इससे कुछ जैसे वीजा रिस्ट्रिक्शन है वो ईज होते हैं। तो मेरे विचार में ये जो इंटर कनेक्शन है हमारा एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, एक दूसरे के जो कल्चर्स है उनको समझने के लिए, इसकी वजह से ये पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे और टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
1: रोमानिया ने मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ मिलकर पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना मजबूत समर्थन दिया था। वैश्विक स्तर पर नई दिल्ली के लिए ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो समर्थन है कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत के लिए टेररिज्म से लड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये तीनों कंट्रीज रोमानिया, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया का जो हमको डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों ने जो पहलगाम टेरर अटैक था इसमें उन्होंने भारत के साथ सॉलिडारिटी दिखाई थी और स्पष्ट तौर पर हमारे साथ वो खड़े थे। तो इस तरह से जो ये

0: ईस्ट यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो जो टेरर के सपोर्टर्स हैं उनको हम अलग थलग करने में और एक यूरोपियन बैकिंग को प्राप्त करने में एंटी टेररिज्म जो हमारी लड़ाई है उसके संबंध में बहुत महत्व रखते हैं। तो मेरे विचार में ये तीनों कंट्रीज का सपोर्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल वॉइस बने टेररिज्म के खिलाफ।
1: मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में जब ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन्स में रुकावटें आ रही हैं, आप मौजूदा पार्टनर्स के साथ संबंध बढ़ाने और नई पार्टनरशिप बनाने पर नई दिल्ली का जो फोकस है उसे कैसे देखते हैं?
0: न्यू दिल्ली का जो फोकस है इन सब संबंधों में वो ऐसा है कि हम जो पुरानी पार्टनरशिप्स हैं अलायंसेस उनको हम और तंदुरुस्त करना चाहते हैं और न्यू पार्टनरशिप भी बनाना चाहते हैं। अब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं क्वाड के साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़े और जैसे एनहेंस कर रहे हैं मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, तो ये दिखाता है कि हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं उनको तंदुरुस्त करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ न्यू पार्टनरशिप भी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मसलन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था या उन्होंने जो विजिट किए जीसीसी कंट्रीज में, वहां पर कुछ हमने ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं और कुछ ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिससे कुछ नए दिशाओं में काम करने की संभावना पैदा हो रही है।
1: मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ करने में राष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा कितनी अहम है?
0: ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक संदेश देती है कि भारत ईस्टर्न और साउथ ईस्ट यूरोप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो संदेश जा रहा है कि हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम है और हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं ये और तंदुरुस्त होती जाएं। तो ये सब जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इस विजिट से पे अगर हम जोर दें, इस पे हम ठीक से स्टडी करें और इस पे फॉलो अप करें। देखिए प्रेसिडेंट ने तो दरवाजे खोले, अब हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करने की जरूरत है कि किस तरह से जो ये नए दरवाजे खोल रहे हैं उनका उपयोग करें और रिलेशनशिप को और मजबूत।
1: राष्ट्रपति मुर्मू की तीनों देशों की यात्रा से यूरोप और अगर हम व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें क्या संदेश जाता है?
0: हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में और हमने बार बार ये दिखाया है कि जब कोई भी देश संकट में आता है तो हम आगे बढ़ के उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। एक आध महीने पहले वेनेजुएला में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, तो इतनी दूर एक स्थित कंट्री को हमने जल्दी से जल्दी सहायता भेजी, तो संदेश ये जाता है कि वी आर अ फ्रेंड इन नीड। जब कोई संकट का सामना कर रहा हो तो हम ऐसे दोस्त हैं कि हम उसकी सहायता करते हैं। तो ये जो दौरा है ये भी संदेश ये देता है कि भारत एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है इन सब देशों के साथ ताकि हम साथ में मिलकर काम कर सकें।

0: सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से सुदृढ़ होते भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से आलमी खबरें सुनिए। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। श्रम इंतजामिया ने जबरन मजदूरी के मामले पर भारत समेत 17 मुल्कों से होने वाली दरामदात पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। फ्रांस में जंगलाती इलाके में आग लगने के तनाजुर में 20,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। बुहेराए अहमर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हूसियों ने हमला किया है। इधर अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले किए और 23वीं दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हम मनसब निकुशोर डैन के दरमियान वफद सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि इश्तराकदारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकिल के लिए मुश्तरका नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने मुतालिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को 2 गुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुआहिदा सनतों और हुनरमंद पेशेवर अफराद के लिए बेशुमार इम्कानात पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अदविया, सेहत की देखभाल, काबिल तश्दीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जरई पैदावार, खाद, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और मसनूई जहानत जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। भारत ने एक खुले, शमूलियत पर मबनी, शफाफ और जाब्तों पर मबनी कसीर जहती तजारती निजाम के अपने अज़्म का इयादा किया है। जिनेवा में वाक़े आलमी तजारती तंजीम WTA में भारत के 8वें तजारती पॉलिसी जायजे के हतमी इजलास के दौरान कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि WTA में इस्लाहात, तरक्की, तरक्की पजीर ममालिक के लिए पॉलिसी इम्कानात के तहफ्फुज, तंजीम की मोतबरियत को मुस्तहकम करने और मौजूदा मैंडेट को पूरा करने पर मबनी होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लाहात एक मुसलसल अमल है और भारत ने एक खुले, शफाफ और काबिल पेशगोई तजारत और सरमायाकारी निजाम के अज़्म को वाज़े किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलात से निमटने की खातिर मुतालिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने मुसलसल काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसव्वदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पेपर के रोज के पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मजकूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेपर लीक होने के वाक़े के बाद से गुज़श्ता 2.5 महीने के दौरान कई इकदाम किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन

0: के जज्बे के साथ मुकाबला करेंगे। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और रोमानिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट सुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। ट्रंप इंतजामिया ने जबरन मजदूरी के मामले पर भारत समेत 17 मुल्कों से होने वाली दरामदाद पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। फ्रांस में जंगलाती इलाके में आग लगने के तनाजुर में 20,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी ब्रिटिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। ट्रंप इंतजामिया ने जबरन मजदूरी के मामले पर भारत समेत 17 मुल्कों से होने वाली दरामदात पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। फ्रांस में जंगलाती इलाके में आग लगने के तनाजुर में 20,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है।

अहमर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हौसियों ने हमला किया है। उधर अमेरिका ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मर्तबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

जी हाँ, ये गाना सुनकर किसको अपना अपना बचपन याद आ गया, मुझे तो आ गया और मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोताओं को भी आ गया होगा। और सही जवाब हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा है, हमारे सारे श्रोता जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। और सबसे पहले जिसने पहचाना है वो है हमारे अजीत भावस्कर जी, जो कि विरम गांव गुजरात से हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको आज हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब मिलता है। तो बिल्कुल हताश न होए, जो भी हमारे श्रोता हैं सारे ही हमारे लिए फेवरेट है। तो एक छोटा सा ये बहाना है, आपसे कुछ तो हमने कहलवाना है ना। तो हम आज बात कर रहे हैं 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम, जिसका निर्देशन शेखर कपूर जी ने किया था। और ये जो गाने की बात हम बात कर रहे थे अभी, लकड़ी की काटी, दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान बच्चों को बिल्कुल स्कूल के माहौल जैसा माहौल दिया गया। कहते हैं ना कि अगर वही माहौल दो तो उसी तरीके से एक्ट भी अच्छा हो जाता है और उसी में रंग जाते हैं सभी। तो इसी तरह से स्कूल का माहौल दिया गया और ताकि उनकी हंसी और शरारतें बनावटी ना लगे। यही वजह है कि आज का ये जो गीत है ना, बच्चों का आज भी फेवरेट है और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो हम जहां बता रहे हैं इस फिल्म के बारे में, और फिल्मों में से एक फिल्म ये, एक तो कहते हैं ना शेखर जी की जो निर्देशन की ये फिल्म है, तो उनकी ये जो निर्देशित फिल्म है वो एक फिल्म उन फिल्मों में से एक है। इसने उन्हें एक ऐसा खिताब दिया, संवेदनशील निर्देशक का। जी हाँ, उनकी जो पहचान बनी वो इसी फिल्म से बनी। कहा जाता है कि ये फिल्म अंग्रेजी उपन्यास मैन वुमेन एंड चाइल्ड इस फिल्म से प्रेरित थी। इस फिल्म से में जो किरदार थे वो तो आप सभी जानते हैं, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जुगल हंसराज, उर्मिला मातोंडकर, आराधना एक बाल कलाकार के रूप में काम करा था, और सईद जाफर जैसे कलाकारों ने अपना अभिनय देकर इसे और खास बना दिया। और आप हमें मैसेज कर रहे हैं, इससे भी आप हमारे इस कार्यक्रम को खास बना रहे हैं। और फिर हमें राजकुमार जी ने मैसेज किया है जिला हिसार से, और उसके बाद हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं पहले ये वाला नगमा।

वाह, ये आवाज भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज का इतना बेहतरीन गीत, और कहते हैं एक ही धुन लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। जी हाँ, पंचमदा यानी आर डी बर्मन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उनकी फिल्म में, ये जो फिल्म है ना, इसमें वाद्य यंत्र बहुत ही सीमित थे, बहुत ही कम थे, लेकिन उनका जो संगीत है इतना हावी हुआ कि दिलों पर छा गया। और हम बता दें कि हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म डी के की है, जिसका रोल है नसरुद्दीन शाह ने निभाया और इंदु का रोल शबाना आजमी ने निभाया। और उनका एक खुशहाल वैवाहिक जीवन से शुरू होती है कहानी। उनकी दो बेटियां पिंकी यानी उर्मिला मातोंडकर और मिनी यानी आराधना बाल कलाकार के रूप में काम किया। कहानी में तूफान तब आता है जब डी के को पता चलता है कि अतीत में एक रिश्ते से उनका एक बेटा भी है और जिसका नाम राहुल है। राहुल का किरदार निभाया बाल कलाकार जुगल हंसराज जी ने। और राहुल की मां की मौत के बाद उसे डी के घर आना पड़ा। पति के धोखे से टूटी इंदु के लिए उस अनाथ बच्चे को अपनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिससे वो पूरे घर में भावात्मक कितना फीलिंग्स जो होती हैं।

वो उथल पुथल हो जाती है, सबके दिल टूट जाते हैं। कहा जाता है कि रिलीज के शुरुआती दिनों में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे, लेकिन जब किसी एक ने देखा और फिर उसने दूसरे को बताया, कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी के बाद सिनेमा घर में भीड़ जुटने लगी और बाद में ये ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। हमारे पास मैसेज आया राजकुमार दादू जी का, उसके बाद हमारे पास अजीत भास्कर जिन्होंने सही जवाब दिया है आज हमें, सुदर्शन मुखी जी, अनीता सिमरन जी शांतिनगर से, और भूषण खेरा जी ने पंजाब से हमें मैसेज किया है, और इसी तरह से डोल राणा जी ने हमें मैसेज किया है, सुनील पाठक जी ने हमें मैसेज किया, कमल पाठक गायक मल्होत्रा अनारकली पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं, हीरामणि वर्मा भाटापारा से हमें मैसेज कर रहे हैं, आर कुमार जी वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें, कपिल छिप्पा पूजा परिहार जी हमें मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, सभी ने सभी सही जवाब दिया, बस सबसे पहले जिसने दिया बस वही एक खेल था हमारे साथ। नमस्कार, और हमें सुरेश जाटकर जी ने हमें मैसेज किया है, बेबी उर्मिला मतौड़कर, सुरेश जाधव, अनीता जाधव नेहरू चौक, इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए और सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा।

हाँ, जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, और ये गाना जो है ना दिल को छू जाता है। आज भी अगर कोई सुनता है तो उसे अपनी जिंदगी की वही पिछली उथल पुथल याद आ जाती है। वो सभी की जिंदगी में होती है, तो कभी भी परेशान ना होए। और ऐसा लगता है ना कि गुलजार साहब ने ये गीत के जो बोल लिखे वो एक एक मात्र पात्र नहीं थे, बल्कि एक जिंदगी का एक सवाल है जो हमसे, हम अपने आप से, खुद से पूछ रहे हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ नहीं जनाब, ये सभी के साथ होता है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, तो निराश और उदास कभी ना होए। एक कहते हैं ना, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। अब हम इस गीत के दो संस्करण रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि एक लता मंगेशकर की आवाज़ में और दूसरा अनूप घोषाल, जो कि अभी आपने सुना। दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में फिल्माए गए, इसलिए दोनों का भाव भी अलग है। जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज हम लेकर हाजिर हैं फिल्म मासूम। श्रोताओं, कहा जाता है कि इस फिल्म के गीत और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए पहले जावेद अख्तर साहब को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण बाद में ये काम गुलजार साहब को सौंपा गया। गुलजार साहब ने अपने गीतों में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के रिश्तों को, एक कहते ना रिश्तों की जो टूटन और जुड़ाव जो था ना, बेहद सरल भाषा में देकर उन गीतों को इतना बेहद भावुक बना दिया कि आज सुनते हैं तो आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ ही जाते हैं। बिट्टू गनेजा जी, हमें सुरेश गंगेजा और पूनम जी ने हमें मैसेज किया है, पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और निर्मला विशाल नावकर और उर्मिला मातोंड जुगल हंसराज ने उन्होंने जवाब दिया है कि बाल कलाकार थे अजीत भास्कर जी ने, और नरेंद्र सुथर जो नमस्कार है ना जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नौहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार जी ने हमें मैसेज किया है, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से रोहित वशिष्ठ जी ने हमें मैसेज किया है, प्रेम सागर, शोभा लता, और नाभा जिला पटियाला पंजाब, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमोद कौर, और धर्मेंद्र शिपा जी, स्वर्ण सिंह जी, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अभिराज, प्रकाश वर्मा जी, प्रिंस निखिल यशस्वी, और राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्होंने हमें और भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसी तरीके से मैसेज करते रहिए। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबली रोड अकोला से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं ये अगला नगमा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा।

हमें मैसेज किया है दिलदार मेरी ज्योति जानवी दिशांत जी ने और संजय ढींगिया जी ने, नमन ढींगिया पार ढींगिया और भागवत वर्मा, शांति लीलावती विनीता रुद्र और पिपरिया से कमलकांत, दीपा रिमझिम, मुकेश, श्रद्धा, राधे, दीपक, अंकु, अदिति और जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस, डिक्रेस तो, और इन्होंने हमें मैसेज किया और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत जी, इन्होंने मैसेज किया, मुकेश भाटा जी ने मैसेज किया है, लालगिरी जी ने हमें, गोस्वामी हेमलता, हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। निसार अली जी ने भी हमें मैसेज किया है।

जी हाँ, मासूम उस वर्ष की सबसे बेहतरीन और संवेदनशील पारिवारिक फिल्मों में से एक थी, जिसे कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। तो श्रोताओं, समय की पाबंदी की वजह से रैना तवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म, उससे जुड़े अनसुने किस्सों, सदाबहारों और यादगार फिल्म उससे जुड़े अनसुने किस्से और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून। एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: पर अब समय हुआ है हमारे न्यूज़ सुनने का, तो अब सुनते हैं पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। नीट मुद्दे ते लगातार हंगामे कारण लोकसभा सोमवार तक उठा दिती गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक उठा दिती गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ते राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी नू नीट यूजी पेपर लीक तो बाद सुधारा नू लागू करन विच हुई प्रगति बारे वेरवे सहित हलफनामा दायर करन दा निर्देश दिता है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अज एक कथित बैंक धोखाधड़ी नाल जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले दे संबंध विच पंजाब, दिल्ली ते उत्तर प्रदेश विच 8 थावां ते तलाशियां लईआं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर विच हो रहे दमन नू नजरअंदाज करन लई संयुक्त राष्ट्र प्रति निराशा प्रगट कीती है। ते भारत दी अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद विच लगातार 5वें दिन हंगामा जारी रहन कारण लोकसभा दी कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दित्ती गई है। पहली बार उठाए जाने तो बाद जदों सभा ने दोपहर 12 बजे अपनी कार्रवाई मुड़ शुरू की थी, तां संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन तो ही नीट पेपर लीक मुद्दे ते चर्चा करने लई तैयार है। उन्हें कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों लाई गई कुछ शर्तां कारण चर्चा रुकी हुई सी। उन्हें यह भी कहा कि सारे मैंबर इस मुद्दे ते उसारू चर्चा की इच्छा रखते ने। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नू भरोसा दिता है कि पेपर लीक मामले नू हल करन लई सख्त कानून बनाए जाणगे। श्री रिजिजू ने कहा कि नीट पेपर लीक मुद्दे का विरोध कर रहे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी चर्चा की जरूरत पर जोर दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर संसद मैंबर चर्चा तो बचते ने ते बहाने बनाते ने तो यह देश नू नकारात्मक सुनेहा भेजेगा।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
1: इस तो पहला नीट पेपर लीक नू लैके विरोधी धिर दे विरोध ते विद्यार्थियों दे मुजाहरियां दे मुद्दे ते संसद दे दोवें सदनां नू दुपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। जदों लोकसभा ने सवेरे 11 बजे अपनी कार्रवाई शुरू की तां सदन ने करगिल जंग विच सर्वोच्च कुर्बानी देण वाले भारतीय हथियारबंद फौजां दे शहीदां नू श्रद्धांजलि भेंट कीती। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 26 जुलाई नू कारगिल विजय दिवस की 27वीं वरेगंढ़ है। उन्हें कहा कि यह दिन फौजियां दी अदुत्ती हिम्मत, बहादुरी अते सर्वोच्च कुर्बानी का प्रतीक है। श्री बिरला ने भी कहा कि कारगिल जंग दौरान भारतीय हथियारबंद फौजां दे बहादुर फौजियां ने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा लई मुश्किल पहाड़ी इलाकों, मुश्किल हालात अते खराब मौसम का सामना करते हुए बेमिसाल हिम्मत अते दृढ़ता का विखाला किया। उन्हें कहा कि पूरा देश इन अमर शहीदों का हमेशा कर्जदार रहेगा जिन्होंने मातभूमि की सेवा विच अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। शहीदों की याद विच सदन विच मौन भी रखा गया। नीट पेपर लीक मामले ते राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। जदों दोपहर 12 बजे पहली बार मुलतवी होने तो बाद सभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की थी, पर विरोधी धिर ने सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफे की मांग करते हुए रौला रप्पा जारी रखा। इस तो बाद सदन नू दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। राज्यसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे शुरू होने ते भी सदन ने कारगिल जंग के शहीदों नू श्रद्धांजलि दित्ती। सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 की कारगिल जंग विच भारत की जित

0: या अतवाउंद है। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि सभा हथियारबंद बला प्रति आपने डूंगी शुक्रगुजारी प्रकट कर दी है। फौजियां दे सम्मान विच राज्यसभा विच भी मौन रखा गया। इस तो बाद स्पीकर ने सिफर काल शुरू करने की कोशिश की थी। विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक अते इस मामले ते विद्यार्थियों दे विरोध का मुद्दा उठाया। रौले रप्पे तो बाद सदन नूं दोपहर 12 बजे तक मुलतवी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने विभागों को पेपर लीक नाल निजिठण लई फास्ट ट्रैक अदालतों लई तजवीज तैयार करने के निर्देश दिते अते विभागों ने लगातार काम किया ते कल देर रात उन्होंने खरड़ा सौंप दिता है। कल रात एक वीडियो संदेश विच श्री मोदी ने कहा कि इस खरड़े विच फास्ट ट्रैक अदालतों ते सख्त सजावां लई प्रबंध शामिल ने ते अज कैबिनेट विच इस ते चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों नूं शामिल करने तों बाद इस नूं अंतम रूप दिता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिवें कि सोमवार नूं संसद का दूजा हफ्ता शुरू हो रहा है, सरकार इस बिल नूं जल्द तो जल्द सदन वल्लों पास कराने लई हर संभव कोशिश करेगी।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे।

0: जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने महकमों से कहा था कि वो पेपर लीक के वाकयात से निमटने के लिए तेज रफ्तार अदालतें तश्कील देने के लिए एक तजवीज तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन महकमों ने अनथक काम किया और उन्हें कल देर रात इसका मुसव्वदा पेश कर दिया गया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में तेजी से काम करने वाली अदालतों और सख्त सजाओं की शिकें तश्कील दी गई हैं। इस मुसव्वदे पर आज काबीना बहस व मुबाहिसा करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे में काबिनी रुफका की तजवीज शामिल किए जाने के बाद ये मुसव्वदा कतई शक्ल इख्तियार कर लेगा। वजीर आजम ने कहा कि जब पीर को पार्लियामानी इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, हुकूमत इस बिल को ऐवान में जल्द अज जल्द मंजूर कराने की कोशिश करेगी।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुसलसल जोर दिया है कि तलबा के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब पाल ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान से मुतालिक बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाने की गरज से एक कानून बनाने से मुतालिक अपने इरादे का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब बीजेपी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने आज कहा कि वजीर आजम मोदी नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करने से मुतालिक अपनी यकीन दहानी को हर सूरत हाल में पूरा करेंगे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से खसूसी तौर पर नामजद तेजी से समाअत करने वाली अदालतें कायम करने के फैसले की सताइश की है, ताकि पेपर लीक से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा केसों की समाअत की जा सके। मीडिया से बात करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि तेजी से समाअत करने वाली ये अदालतें यौमिया बुनियाद पर इन केसों की समाअत करेंगी, ताकि नौजवानों को इंसाफ फराहम हो सके।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे और उन खतों पर दस्तखत कर चुके थे, जिनमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले उस वीडियो को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान एक तालिबे इल्म की मौत हो गई है। वीडियो में ये इल्जाम भी लगाया गया है कि पुलिस ने इस तालिबे इल्म की वालिदा की शिकायत पर एक FIR दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने वजाहत की है कि यह दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा है कि दिल्ली में एहतजाज से वाबस्ता कोई मौत नहीं हुई है, और ये कि मस्कूरा खातून से मुतालिक वायरल वीडियो AI से बनाया गया डीप फेक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा में आज लगातार पांचवें दिन शोरोहोल जारी रहने के बाद ऐवान की कार्यवाही पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली मर्तबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तो पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए, और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट

0: विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा।

0: दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
1: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी मां मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
1: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कम्बाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम रेट 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप सभी समझ चुके होंगे आज के हमारे कलाकार हैं मनोज कुमार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही खास है। आज जैसा भी हमने नाम लिया, एक ऐसे सितारे की हम बात कर रहे हैं जिनकी अदाकारी में सिर्फ एक कलाकार की चमक ही नहीं बल्कि देश का स्वाभिमान भी झलकता है। इनके हाथ का गाल पर आने का स्टाइल आज भी हमारी यादों में बसा है, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से भारत कुमार कहती है। जी हाँ, सिनेमा के सबसे देशभक्त और सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार जी, आज उनका जन्मदिन भी है। अगले आधे घंटे तक हम उनकी जिंदगी के पन्नों को टटोलेंगे, उनके उन गीतों की यात्रा करेंगे जो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए इस संगीत में सफर का आगाज करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

श्रोताओं, जब भी हम ये गीत सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना स्वतः ही बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार जी का असली नाम क्या था? चलिए हम आपको बताते हैं। मनोज जी का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था, और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मनोज जी दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दिलीप जी की एक फिल्म आई थी शबनम, उसमें एक चरित्र था जिसे देखकर मनोज कुमार इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। कांच की गुड़िया से शुरुआत की, लेकिन पहचान मिली फिल्म हरियाली और रास्ता और वो कौन थी से। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक और खूबसूरत गाना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मनोज जी को भारत नाम कैसे मिला? चलिए आपको इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। 1965 के युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फिल्म शहीद देखी। वे मनोज जी को उनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने का आग्रह किया। मनोज जी ने ट्रेन के सफर में ही उपकार की कहानी लिखी और यहां से जन्म हुआ एक नए चरित्र भारत का। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक और खूबसूरत गाना।

हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार और हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, मनोज कुमार जी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अद्भुत निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। पूरब और पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, उनकी हर फिल्म में समाज के किसी न किसी पहलू पर गहरा कटाक्ष और राष्ट्रप्रेम की झलक मिलती है। पूर्व और पश्चिम में उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और भारतीय मूल्यों के बीच जो संतुलन पेश किया और जनता को दिखाया, वो आज भी प्रासंगिक है।

श्रोताओं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार जी आज भी हमारी पीढ़ी के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। सिनेमा में उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका स्टाइल, उनके लिखे संवाद, उनके गीतों का राष्ट्रप्रेम हमेशा हमें प्रेरित करेगा।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के दरमियान इक्तिसादी और सरमाकारी के ताल्लुकात में तोसी के लिए कहा है। उन्होंने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया तिजारती फोरम से खिताब किया। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलकूद के मैदान में 3 माहदों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में आवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अकवामे मुत्तहिदा की नुक्ताचीनी की है। उसने पाकिस्तान पर आवाम के हुकूक मुनज्जम तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। अमरीका ने बहर अहमर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हौसियों के हमले के बाद ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए हैं। और भारत की अनंत सिंह आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के दरमियान इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात को तौसी देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में मजीद गहरे तिजारती ताउन की ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिन्हें अभी तक बर्रोए कार नहीं लाया जा सका है। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि रोमानिया की दिफाई एतबार से जाए वकू हुनरमंदी के हामिल अफराद और यूरोपीय यूनियन के साथ पुख्ता वाबस्तगी की वजह से यह मुल्क भारत के लिए एक काबिल कद्र शराकत दार है। मीन्स ये मुल्क एक वसी तर यूरोपीय मार्केट का रास्ता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुजवजा माहिदा तिजारत सरमाकारी और हालात से मुताबिकत रखने वाली सप्लाई चेन को फरोग देकर इक्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के राह में एक संग मील है। भारत ने खुले शमूलियत पर मबनी, शफाफ और जाब्तों पर मबनी कसीर जहती तिजारती निजाम के अपने आजम का अदा किया है। जिनेवा में वाकई आलमी तिजारती तंजीम WTO में भारत के 8वें तिजारती पॉलिसी जायजे के हतमी इजलास के दौरान कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि WTO में इसलाहत, तरक्की पजीर ममालिक के लिए पॉलिसी इम्कानात के तहफ़ तंजीम की मोतबरियत को मुस्तकम करने और मौजूदा मैंडेट को पूरा करने पर मबनी होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलाहत एक मुसलसल अमल है और भारत में एक खुले, शफाफ और काबिल पेशगोई तिजारत और सरमाकारी निजाम के अज़्म को वाज़ा किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा से मायूसी का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके जेर कब्जा कश्मीर में लोगों की आवाज दबाए जाने को नजरअंदाज कर रही है, जबकि उसने दूसरी जगहों पर इस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर POK में अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P. हरीश ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हकूक की पामाली और मकबूजा कश्मीर नीज पूरे मुल्क में आजादी को कुचलने के वाकयात का जिक्र किया है। अमरीकी फौज ने मुसलसल 13वीं रात ईरान पर यह कहते हुए हमले किए हैं कि इनका मकसद सिविलियन मल्लाहों को लाए खतरे और आबदाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना है। बहर अहमर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर होसी बागियों के हमलों के दावों के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया है और जहाजरानी के अहम रास्ते में रुकावट के बारे में तशवीश में इजाफा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर जहाजों पर हमले जारी रहे तो होसियों को बड़ी फौजी कार्रवाई की वार्निंग दी है और कहा है कि इसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा। आलमी तवानाई सप्लाई चेन में तवील मुद्दत तक रुकावट के खदशात के पेश नजर ब्रेंट खाम तेल में 6% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया जो तकरीबन 100 अमरीकी डॉलर फी बैरल है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि सफालतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान ने कहा है कि 27 जून से अमरीका के हमले फिर शुरू होने के बाद से 55 अफराद हलाक और 629 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अमरीका ने सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी के मामले पर तश्वीश के तनाजुर में भारत और दीगर 16 मुल्कों से होने वाली दरामदात पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियन ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिन नए महसूलात का हुक्म दिया है उनके जरिए 60 मुल्कों को निशाना बनाया गया है। जबरन मजदूरी के साथ दरामदात पर मौसर पाबंदी नाफिज करने में नाकाम रहने के बिना पर तिजारती एक्ट की दफा 301 के तहत ये कदम उठाया गया है। 10% शराह के महसूल का इतलाक भारत, कनाडा, बरतानिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 17 मुल्कों पर होगा। ये टैरिफ मुख्तलिफ मुल्कों पर आयद किए गए 10% आरजी महसूल की जगह लेगा जिसकी मुद्दत कल खत्म हो चुकी है। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें मई के बाद पहली मर्तबा $100 फी बैरल से तजावज कर गई हैं। ऐसा आलमी तवानाई सप्लाईज के बारे में मगरबी एशिया में कशीदगी के इजाफा होने के सबब हुआ है। ईरान पर अमरीकी हमलों में तेजी आने और यमन के हूसी बागियों की जानिब से बोर अमर में तेल टैंकरों पर हमलों के बाद कल तवानाई के आलमी पैमाने ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीकी इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनअती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई वर्षों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। आज पूरे मुल्क में इनकम टैक्स का दिन मनाया जा रहा है जो भारत के इर्तिका पजीर टैक्स निजाम में एक संगे मील की हैसियत रखता है। इस मौके पर इनकम टैक्स महकमे के क्याम और तरक्की को याद किया

0: आता है। कई दहाइयों से भारत के टैक्स निजाम में खातिर ख्वाह तब्दीली की जा रही है। एक बड़ी तब्दीली 1981 में की गई थी, जब टैक्स इंतजामिया के कामकाज में कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। टैक्स चालान का ये इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात के लिए एक बुनियाद साबित हुआ। इसके बाद 1995 में मुस्तकिल खाता नंबर पैन का आगाज हुआ, जिसकी बुनियाद पर माली लेन देन पर बेहतर तरीके से नजर रखी जाने लगी। इस डिजिटल इनकलाब की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइल ऑनलाइन दाखिल की जाने लगी और इससे मुतालिक कामकाज में तेजी आ गई। ई फाइलिंग के सबब कागजी कामकाज में खातिरख्वाह कमी आई है। इस कामकाज पर आने वाले अखराजात में भी कमी दर्ज की गई है और टैक्स दहिंदगान को मुतालिका खिदमात हमा वक्त दस्तियाब हो गई हैं। इसमें दौलत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आगाज हो गया है। किंग चार्ल्स स्वयं ने क्वीन कैमिला बरतानिया के वजीर आजम एंडी बोर्नहम और दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों के सदर डोनाल्ड रुकेरे की मौजूदगी में ओवीओ हाइड्रो में कल शाम इन खेलों का आगाज किया। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लोलेना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए ओवीओ हाइड्रो एरेना में दाखिल हुए। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरक खेलों में तमगों के मामलों में भारत ने अपने खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लोलेना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। इस जुमरे में महज 5 एथलीट हैं। लवलीना समेत मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी सीधे सेमीफाइनल में दाखिल हो गए, जबकि बकिया को वाहिद क्वार्टर फाइनल मैच खेलना होगा। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश अज़्म मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वजीर अजम ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरगीब फराहम होगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के दरमियान इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात में तौसी के लिए कहा है। भारत और रोमानिया ने साइंस टेक्नोलॉजी तालीम और खेलकूद के मैदान में 3 माहदों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में आवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अकवाम मुत्तहदा की नुक्ताचीनी की है। उसने पाकिस्तान पर आवाम के हकूक मुनज़्ज़म तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। और अमरीका ने बहर अहमर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हौसियों के हमलों के बाद ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे मनोज कुमार पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी नगमे। आज उनका यौम पैदाइश है। मनोज कुमार 24 जुलाई 1937 को गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के एबटाबाद इलाके में पैदा हुए। फिर तकसीम का सानह आ गया जब वो 10 बरस के थे, दिल्ली शिफ्ट हो गया। यहीं से उन्होंने अपनी तालीम शुरू की और हिंदू कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वो दिलीप कुमार की फिल्में देखते थे और उनसे बहुत इंस्पायर थे, उनकी अदाकारी को बहुत पसंद करते थे। इसी बिना पर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। कहते हैं कि शबनम फिल्म जो 1949 में दिलीप कुमार साहब की आई थी, उसको देखकर वो इतना मुतासिर हुए थे कि उन्होंने अपना नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार किया था। इब्तदा में मनोज कुमार को छोटे छोटे किरदार मिले, जैसे फैशन फिल्म में, सहारा में, चांद में, हनीमून में। उसका फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी अदाकारी की जौहर डायरेक्टर्स पर खुलने लगी और इस तरह उन्हें फिर बड़े बड़े काम मिलने लगे।

मनोज कुमार की अदाकारी से सजी एक और फिल्म थी, वो कौन थी? वो फिल्म भी बहुत हिट रही और बहुत मकबूल रही और उसके नगमे भी एक जमाने तक, उन नगमात ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी।

मनोज कुमार की फिल्मों का जब तस्करा होगा, एक फिल्म का जिक्र हो रहा है और फिल्म थी दस नंबर, यकीनन आपको फिल्म याद होगी और उसके नगमात भी याद होंगे और मनोज कुमार की अदाकारी भी आपके जहन में होगी।

0: कि उनकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद आती थी
1: जी।
0: मैं उस वक्त उर्दू पढ़ नहीं सकता था, अब तो पढ़ लेता हूँ।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे सिखाया उर्दू पढ़ना, पर्शियन भी थोड़ा थोड़ा सिखाया, लेकिन उस वक्त वो पढ़ पढ़ के स्टोरी जो सुना है तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम मेरे साथ एक स्टोरी में काम करो, तो एक 8 दिन करके स्टोरी मैंने बनाई और उन्होंने सब दूसरों को छोड़कर मेरे पास आ गए। ये क्या कि प्यार जरा बढ़ता गया और उसके बाद वो मुझे थोड़े से सनकी किस्म के थे। एक फाइनल जब मैं बॉम्बे टॉकीज में 1947 साल में बॉम्बे टॉकीज में गया तो महल में उन्होंने काम किया है, महल भी उन्होंने लिखा
1: जी।
0: हाँ, 5-6 आदमी थे जो महल भी लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दादा मुझे आपको एक स्टोरी देता हूँ देखिए। तो मैंने कहा कि क्या स्टोरी है, तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के दूंगा। तो सीन बाय सीन शॉट बाय शॉट लिख के उन्होंने एक बड़ी मोटी किताब मेरे सामने 1 महीने के बाद दी। तो मैंने वो किताब देखी, देखने के बाद जो कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे। मैंने कहा मंटो जरा एक काम करो, ये दूसरा लिखो एक। बेचारे को आंसू आ गए उसके आंखों से। देखा आपको पसंद नहीं, मैंने कहा पसंद नहीं तो मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, पसंद नहीं आई मुझे। अच्छा करके चले गए, सामान अपने घर का 600 रुपए में बेच दिया और दूसरे दिन पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। अब मैं उसको बुला रहा हूँ लेकिन वो शर्म करवा रहा, अब तो मुझे शर्म लगती है आपके सामने कि मैंने ये क्यों किया, इसलिए नहीं आया वो। लेकिन हमेशा यहाँ से कोई जाए जो पाकिस्तान में तो उनके जरिए उनको खबर मैं दे देता था अपनी, वो भी खबर अपनी दे दिया करे। आखिर मुझे ये मालूम हुआ कि शायद उनका दिमाग खराब हो गया था।
1: जी हाँ, कुछ ऐसी ऐसी हाँ,
0: तो वो थे सन की किस्म के, दिमाग खराब होना बड़ा ही पॉसिबल था उनके लिए।
1: अच्छा, उन्होंने ये लिखा है कि आपकी जो इश्क एक्टिंग है हाँ। उसके सिलसिले में आप ही के जो स्केच में कि अशोक कुमार जब पर्दे पर कोई इश्किया रोल करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे कैस कराई पी
0: है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग छोटी सी जगह के रहने वाले खंडवे के, तो वहां पर जब मैं स्कूल में जाता था और शाम को घर आता था तो हमारे पिताजी साथ साथ ले जाते थे हमें, ताकि मैं कहीं मिलूं नहीं किसी से। वो जरा कैरेक्टर मॉरल के जरा पक्के थे, तो आदत सी हो गई है लड़कियों से जरा थोड़ा सा घबराता, अभी भी घबराता हूँ, लेकिन वो घबराहट हमारे पिताजी ने पैदा कर दी। तो उसके लिए मैं वालिद साहब को शुक्रिया दूं या ना दूं वो आप लोग किस जाने।
1: तो अब अगर आपको इश्क में रोल दिया जाए इस उम्र में तो आपको कैसा लगेगा?
0: छुटपन से तो बेहतर कर लूंगा।
1: आपने कई तरह के हीरो का रोल किया है, हीरो के अलावा भी बहुत मेजर रोल कैरेक्टर रोल्स आपने किए हैं, तो आपको खासतौर से हीरो की आपकी डेफिनेशन क्या है? यानी हीरो
0: का तो मतलब ये है जिसके ऊपर रोल लिखा गया हो, जिसको हीरो कहते हैं। दरअसल ये फन वर्ड है हीरो
1: जी।
0: अच्छा, हम लोग यहाँ हीरो उसको कहते हैं जो इश्क करता है हीरोइन से, उसको हीरो कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर कहानी लिखी गई हो उसी वही कैरेक्टर है, वही हीरो है। जैसे मैं आशीर्वाद तो देखा नहीं होगा आपने, हाँ, तो उसमें तो कहा था कि हीरो का रोल बहुत छोटा था, हीरो का रोल दरअसल मेरा ही था। जैसे ये पिक्चर अनुराग, उसमें भी हीरो का नाम मेरा ही है
1: जी।
0: लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हीरो के काम में सिवाय इश्क और कुछ खास नहीं रहता। इसमें ऐसे रोलों में तो एक्टिंग करने का मौका मिलता है, कुछ दिखाने का मौका मिलता है, उसमें कुछ खास मिलता नहीं, दौड़ा दौड़ी और बड़े स्वीट मीठे मीठे बातें करना मिलता है और कुछ नहीं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें फर्क यही है
1: जी। हाँ, आपने यानी इतनी तरह के रोल किए हैं कि जैसे मालिक में आपने साधु का रोल किया था और मेरी सूरत तेरी आंखें में जो आपने रोल किया था बदसूरत गवैये का, उससे मुझे ये ख्याल आता है कि हिंदुस्तानी फिल्म साज ये बात कब सीखेंगे कि हीरो बदसूरत भी हो सकता है, या उसके लिए बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करना स्क्रीन पे ये जरूरी नहीं
0: है। अब ठीक आइए, क्या है अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी पुरानी नहीं हुई जहां पर ऑडियंस इतनी समझ ले कि हीरो किसे कहते हैं, अभी तक समझ में नहीं आया उनको। वो समझते हैं हीरो का मतलब यही है, लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग जो है ये अमेरिका में जिस तरह से होता है यहाँ भी होगा, लेकिन 10-20 बरस के अंदर होने वाला, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जरूर इस बात को समझ जाएगी जो आप इसे कह रहे हैं
1: जी। अच्छा सर, जो यानी हीरो के खिलाफ जो आदमी होता है या हीरोइन और हीरो के दरमियान में जो ट्रेंगल फॉर्म करता है वो हिंदुस्तानी फिल्मों के जो का रिवायती ट्रेंगल है उसमें एक विलन भी हुआ करता है, तो क्या ये विलन लाजमी है?
0: एक तस्वीर देता हूँ आपको, मैं किसी

0: एक बीमार आदमी थे उनको देखने के लिए अस्पताल गया
1: जी।
0: तो वहाँ वो पड़े हुए थे, मैं देखने के लिए गया तो जहां को खबर मिली कि अशोक कुमार आए हैं, तो जितनी नर्सेस लेडी डॉक्टर्स डॉक्टर सब भाग गया है और आके देना शुरू किया फिल्मों को गाली। तो आप लोगों के ऐसा क्यों होता, गाना क्यों होता, विलन क्यों होता, जो आपने पूरा ये सवाल पूछा कि हर बदल गाना गा देते हैं ये गाते तो कैसा क्यों ने? अमेरिकन फिल्म देखिए कैसा होता है। तो मैंने कहा मैं अमेरिकन हॉस्पिटल भी देख चुका हूँ, आपका इतना मेला क्यों है यार, ये टेबल के नीचे कपड़े क्यों लगे हुए हैं, आप लोग अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने ये तो हमारे पास पैसे की कमी है, हम लोग इतने पॉसिबल नहीं हमारे लिए। मैंने कहा बिल्कुल वही बात है, हमारी भी वही बात है फिल्म के लिए।
1: आपने खुद यानी मुझे आपकी बहुत पुरानी फिल्म की एक याद आ रही है, इधर भी किए होंगे इस किस्म के रोल, किस्मत में जैसे आपका एक रोल था लेकिन वो हीरो का रोल था, लेकिन उसमें यानी वो जेब कतरे का रोल था, एक मुजरिम का रोल था, तो क्या तो हीरो और विलन में क्या फर्क हुआ?
0: नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही चीज मैं कह रहा हूँ, ऐसी चीजें लोगों को पसंद आती है लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन जरा कम है, 70% लोगों को एजुकेशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए अपने प्रोड्यूसर क्या समझते हैं कि शायद खींचने लगे इसलिए बना दो। मैं डेविड लिन से एक दफा मिला था, डेविड लिन से कहा था तुम पिक्चर बनाने की तुम्हारी यानी क्या कहते हैं बेसिस क्या है, किस बेसिस पर तुम पिक्चर बनाते हो? उन्होंने कहा मुझे जो अच्छा लगता मैं बनाता हूँ, अगर लोगों को अच्छा नहीं लगे तो मुझे फिल्म में रहने का कोई हक नहीं। मैंने कहा यही होना चाहिए, प्रोड्यूसर को जो अच्छा लगे वही बनाए, आर्टिस्ट को जो अच्छा लगे करने को वही करे, लोगों को पसंद नहीं आता उसे निकल जाना चाहिए।
1: जी जी, आप भी ये फिल्मों में रोल एक्सेप्ट करने के पहले क्या कहानी और अपने रोल को पूरी तरह से देख के फिर पसंद करते हैं, या जो रोल आपको ऑफर किया जाता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ से उसे ज्यों का त्यों मंजूर कर लेते हैं?
0: देखिए मुझे इतने साल हो गए यहाँ फिल्म में कि मेरे जो असिस्टेंट्स थे कभी कभी जिनको मैंने सिखाया भी था, बहुत से हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, तो वो जब आते हैं मेरे पास कि भाई मेरे पास एक स्टोरी है फर्स्ट क्लास स्टोरी है तो आप जरा उसे कर दें, मैं सुनता हूँ मुझे पसंद नहीं आती
1: जी,
0: पसंद नहीं आती, लेकिन वो प्रोड्यूसर समझता है कि बहुत अच्छी स्टोरी बना रहा हूँ, तो ये तो क्या है कि एक दिल का मामला है, दोस्ती का मामला, उस तरह से कर देता हूँ, हर जगह मैं ऐसा रोकता नहीं हूँ, कोई तो स्टोरी अगर पसंद नहीं आई अगर प्रोड्यूसर कहता है कर ही दीजिए तो मैं कर ही देता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना कि 175 पिक्चर तो ऐसे निकल गए मेरे, 25 दिन चले होंगे, राजेश खन्ना मेरे पास आए कहा मैंने ये पिक्चर कर दीजिए मालिक में, तो मैंने कहा भाई मैं ये साधु होते रोल बनेगा नहीं, दरअसल मैं साधु हूँ ही नहीं, तो साधु सीखना पड़ेगा साधु होना, मैंने बस 5 दिन का काम है, 5 दिन में वो कर दीजिए आप, मैंने कहा रोल अच्छा है पिक्चर चलेगी, मैं पिक्चर रोल अच्छे की बात नहीं करता, मैं पिक्चर चलेगी कि नहीं करता, तो मैं पिक्चर जरूर चलेगी, वो चली नहीं उसका बैड लग मेरा बैड लग।
1: और जब ये जो यानी जब से आप एक स्टार बन गए, पहले तो स्टार सिस्टम पे बात हो कि ये स्टार सिस्टम का बन जाना हिंदुस्तानी फिल्म के लिए ठीक हुआ है या गलत हुआ है?
0: स्टार सिस्टम तो दुनिया भर में है लेकिन प्रोड्यूसर सिस्टम भी दुनिया भर में है, यहाँ प्रोड्यूसर का सिस्टम नहीं है
1: जी।
0: मैं जब प्रोड्यूस करता था पिक्चर, मैंने 19-20 पिक्चर बनाई है, तो उस वक्त मैं प्रोड्यूसर्स के मीटिंग में गया, तो जो चेयरमैन थे उस वक्त, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा कि देखिए बड़ी तकलीफ हो रही है स्टार सिस्टम की वजह से हम लोगों को, तो जो स्टार 3 पिक्चर से ज्यादा काम करे उसे नहीं लेंगे हम लोग, सबने साइन किया, और चेयरमैन ने खुद एक आदमी को ऐसे लिया स्टार को जो 6 पिक्चर में काम कर रहा, फिर सबने जोड़ दिया। तो ये बात है।
1: स्टार सिस्टम के बन जाने के बाद जो जिस ढर्रे के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री चली है, और खासतौर से यानी वहीं से ले लीजिए आप 1947 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में किस किस्म की फिल्में बनी उनका तो हमें कोई इल्म है नहीं,
0: हम देखेंगे
1: जी हाँ, तो ये जो तरक्की हुई है या जो कुछ भी हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है फिल्म का, इससे आप मुतमईन हैं?
0: मेरा क्या ख्याल है ये एक चक्कर है, ये हमेशा आता है और जाता है, स्टार सिस्टम भी चला जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को तकलीफ होने लगी अब स्टार सिस्टम की वजह से, जब तकलीफ होने लगेगी जैसे कि दुर्भिक्ष अकाल आ जाता है ना, वैसे ही हो जाता है फिल्म में भी, अकाल आ गया, अकाल आ गया सब सुधर जाते हैं, फिर जब ठीक होने लगते तो फिर वो बात होती है, इसलिए ये सिस्टम हम उसको परमानेंट नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में कम से कम 4 दफे ये बात आई है, 10-10 साल में ऐसे 4 दफे आ गई बात, हमने देखा हर बार कुछ ना कुछ होता सुधर जाता फिर शुरू हो जाता।
1: आपने अब तक जो रोल्स किए हैं फिल्मों में उनमें सबसे ज्यादा मुतमईन आप अपने किस रोल से?
0: ये बहुत ही मुश्किल सवाल, मैंने ये देखा है कि जिस रोल में मुझे मजा आया करने में वही पिक्चर भी चली रोल भी चला, लेकिन हर रोल में मुझे मजा नहीं आता करने में, मालूम होता है कि क्या कर रहा हूँ पता नहीं
1: जी।
0: हाँ मैं आधा आधे नींद में कर लेता हूँ, अब क्या कि डायलॉग तो

0: मुझे खुदा बोली आप, मैंने कहा अच्छा भी खुदा बोलते हैं। ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जब मैं बंगाली हूँ अभी काकी का गड़बड़ कभी भी होता है। अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ इसमें कितनी गलतियां होंगी काकी में, वो आप देख लेंगे जब सुनेंगे इसको बाद में। तो ये तो इसके लिए किसी को रहना जरूरी, चाहे वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, एक आदमी रहना चाहिए जो कि जान देखेगा कि ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है हमेशा सब चीजों में।
1: अगर आदमी अब आपके साथ जिन हीरोइनों ने पार्ट किया है ये जो फीमेल रोल्स रहे हैं उनमें से आपको कौन कौन, यानी एक एक्टर की हैसियत से, एक फनकार की हैसियत से मुतमईन कर सकें?
0: दरअसल बात यह है कि मैंने इस काम को, ये कौन काम कर रहा है, कौन मेरे सामने है पीछे, इसकी मैंने अभी तक सीरियसली कोई सोचा नहीं है। जिन जिनने काम किया, किसी किसी के कुछ स्पेशलिटीज हैं, जैसे मीना कुमारी के साथ बहुत से पिक्चर किए मैंने, देवी रानी के साथ बहुत से पिक्चर किए, देवी रानी से पिक्चर कर रहा था तो उस वक्त मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ आने लगी। लेकिन मीना कुमारी से जब पिक्चर किए मैंने तो उस वक्त दोनों में ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि डायलॉग हम लोगों को पढ़ना या याद नहीं करना पड़ता था, हमने कुछ भी बोला उसका कुछ भी जवाब दे देती। ऐसे महमूद के साथ मेरा होता है, हम अभी जो पिक्चर्स करते हैं उसके साथ, तो महमूद को बचपन से ही मैंने देखा उसको, तो पिक्चर करते हैं तो कोई डायलॉग फिक्स नहीं होता, जब दो फुल देखेंगे सब बना के डायलॉग सेट के ऊपर हुआ। तो इस बात की मैंने कभी सीरियस चिंता नहीं की कि भाई कौन काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है। अपना काम मैंने देखा, दूसरे काम बिगड़े नहीं ये देखा कि मेरी वजह से उसका काम बिगड़े नहीं ये भी देखा है। बाकी सब में कुछ कुछ गुण तो है सब में, ये मैं आज। और दूसरी बात है, अभी तक मैं अपने सीरियस नहीं उसका मैं वो उदाहरण देता हूँ कि मैं, मेरे पास एक तस्वीर नहीं है जो मैंने 1934 से काम कर आज तक एक तस्वीर नहीं है, मेरे पास कोई बुकलेट नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि कब तक काम करेंगे, हमेशा सोचता था कि 5-6 साल के बाद तो खत्म ही हो जाते हैं सब, तो 5-6 साल के बाद मैं कोई पान की दुकान या कपड़े की दुकान खोल लूंगा। तो 5 साल निकल गए, फिर समझा कि अब दूसरे 5 साल में क्या सोचना चाहिए, अब बड़ी दुकान कुछ करें कुछ पैसे आ गए, तो तीसरा 5 साल भी निकल गया, चौथा 7-5 साल निकल गए। तो इसलिए वो सोचने का मौका कभी मिला नहीं कि क्या करना चाहिए मुझे।
1: आपने जिन जिन हीरोइंस के साथ काम किया है उनमें से कुछ किसी के तो कुछ नकूस आपके जहन में होंगे?
0: सबके कुछ तो है, क्या मैं मतलब
1: किन किन, यानी ये समझिए जब से शुरू किया था, आपकी पहली हीरोइन कौन थी? मतलब
0: पहली हीरोइन थी देविका रानी,
1: अच्छा,
0: फिर थी लीला चिटनिस, फिर ममता शांति, फिर अभी याद भी नहीं है कि कौन कौन थे, आए और गए आए और गए, अभी इसमें से इनमें से तो कोई है ही नहीं। मीना कुमारी भी गई, फिर निरूपा आए है अभी अभी अभी कर रही है, अभी मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ मेरे को तो, मैं बीमार था इसलिए। और कौन है मेरे साथ, तू वहीदा रहमान के साथ थोड़ा सा हुआ, अच्छे आर्टिस्ट सब। मैं ये कह नहीं सकता कि कौन किससे बेहतर है, किसी का कुछ अच्छा है किसी का कुछ अच्छा है।
1: जी, जिन अदाकारों के साथ आपने काम किया है उनके,
0: जैसे मैंने तो सबके साथ ही काम किया है।
1: जी जी, मेरा मतलब है पाकिस्तान में जो अब है।
0: हाँ, पाकिस्तान में अभी वहां की उनकी खबर तो आती नहीं मुझे। मैं जैसे बोल रहा था कि एम नजीर मेरे साथ 1936 से काम कर रहे थे, बड़ी दोस्ती हो गई थी, स्टोरी भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे छोटे छोटे उर्दू पेपर्स में। तो मैंने उनको बड़ा एक कहानी उन्होंने सुनाई, मैंने उनको बुलाया और मजबूर बनिया, वो चली खूब। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ झगड़े चल रहा था 1947 में, लोगों ने बड़ी धमकियां दी। मैंने कहा भाई हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, आप मुसलमान हैं हिंदू हैं, हमारे लिए आर्टिस्ट हैं, तो हम ये अच्छा। लेकिन लोगों ने बड़ी धमकी दी थी, मैंने कहा कि तुम दूसरी स्टोरी फिर सुना, दूसरी स्टोरी उन्होंने सुनाई वो अच्छी लगी, अब वो कहां पता नहीं। कुमार भी उनके साथ भी काम किया, किसी का पता नहीं। एक हसरत लखनवी थे, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। शाहनवाज कहां है वो भी क्या कर रहे हैं पता नहीं। एक दफा आए थे शाहनवाज, बड़ी खुशी हुई थी मिलके, लेकिन उम्र हो गई उनकी, शायद 70 साल की हो गई होगी, ज्यादा हो गई होगी, क्या कर रहे हैं उनको दिखता नहीं। बोले मैंने दिखता नहीं, बोले मेरी भी हालत होने वाली है ऐसी, मुझे भी अब कम दिखने लगी है। नूरजहां के साथ मैंने काम नहीं किया, इत्तेफाक नहीं हुआ, उनके गाने बहुत पसंद आते थे मुझे। अभी मुझे मेहंदी हसन के गाने बहुत पसंद आते हैं, अगर कहीं मेहंदी हसन के गाने मिल जाए मुझे, या उधर कभी अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो मैं तो भाई उनको जरूर बुलाकर उनके गाने सुनूंगा।
1: दादा मुझे फिल्मों के अलावा आपकी दिलचस्पियां और किन किन चीजों में?
0: मैंने कुछ दिन तक एस्ट्रोलॉजी सीखी, होम्योपैथी भी सीखी, पेंटिंग भी सीखी, चेस भी खेलता रहा। ये अपने आप को मैं जरा अलग ले जाने के लिए करता हूँ, किसी चीज में थक जाता हूँ तो दूसरी चीज में चला जाता हूँ। अभी आजकल टेप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो गाने वालों को बुला के तबला वाला के साथ कभी मौका तो सुनिए। वाकई बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
1: कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए
0: एक्सपेरिमेंट किए

0: अच्छा, यानी किस
1: किस्म के? जैसे एक रिकॉर्ड में से, अपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड में से साउंड और म्यूजिक अलग किया।
0: अच्छा।
1: ये जो मुश्किल बात है, मेरे को कई दफे बदल बदल के बदल वाले करना पड़ा, म्यूजिक कम करके ये करके बढ़ा के करना पड़ा, तो बदल के किए हैं।
0: मोहम्मद
1: रफी, मोहम्मद रफी तो उनके गाने पर किया था, उनको मैंने सुनाया था, मैंने कहा देखो भाई तुम्हारा गाना रिकॉर्ड है, और फिर साउंड इधर से दिया, म्यूजिक इधर से दिया, तो किया था मैंने ऐसा।
0: अच्छा, तो सिर्फ आप गाने ही रिकॉर्ड करते हैं या साउंड्स वगैरह?
1: साउंड्स भी लिया है, साउंड्स भी लिया है, जो परकशनिस्ट बहुत से हिंदुस्तान में यहाँ जो बड़े अच्छे, जो मृदंग बजाने वाले, उनका भी लिया, बहुत सारों को लिया।
0: नरमनी, आपकी एक्टिंग देख, पर्दे पर ही देखकर आप के लोगों की तबीयतें जो है वो ठीक हो जाती हैं, फिर ये होम्योपैथी का शौक आपने किस लिए?
1: होम्योपैथी का क्या हुआ था कि मेरी बीवी बीमार हो गई थी, तो बहुत दिनों तक एलोपैथी इलाज कराया, वो अच्छी नहीं हुई। फिर एक लंदन से एक डॉक्टर आए थे, वो एलोपैथ हैं लेकिन होम्योपैथी करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैंने कहा क्या ठीक करेंगे आप, 1953 की बात है ये
0: जी।
1: उसके बाद उनने पता नहीं क्या दवाइयां दी, दो महीने के अंदर वो फुल, यानी 86 पाउंड से 120 पाउंड हो गए, बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने कहा ये मुझे सिखाई है, तो उन्होंने कहा ये सीखना तो आसान नहीं है, पहले आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी देखना पड़ेगा। मैंने कहा किताब लाइए, वो किताब जाके ले आया, वो एक साल का कोर्स है, मैंने 10 दिन में खत्म किया, चुपके चुप रात रात पढ़ के। फिर उनको कहा डॉक्टर को कि आप मुझे एग्जामिन कर लीजिए जरा, तो वो हंसने लगा कि तुम्हें अभी से एग्जामिन करो, तो एग्जामिन के सारे सवाल जवाब दिया उसने, तब उसने मुझे बताना शुरू किया, अभी भी मैं लिखता रहता हूँ उसको।
0: नरमनी, क्या आप ये सोचते हैं कि एक्टिंग सिखाई भी जा सकती है? मसलन जो फिल्म इंस्टीट्यूट खुली है और उससे जो लोग अब फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में और उनकी ट्रेनिंग जो हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
1: ट्रेनिंग तो जरूर चाहिए, चाहे आप बॉर्न एक्टर हों, पर ट्रेनिंग जरूर चाहिए। ये तो पुरानी बात है कि आर्ट, स्टूडेंट ऑफ आर्ट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, वो तो सीखना ही पड़ता है। ये बात है कि अगर उसमें कोई इंटरनल क्वालिटीज नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं, सीख के भी कोई फायदा नहीं। पर ये जरूरी नहीं कि उसके लिए स्कूलिंग होना चाहिए, खुद ब खुद हम लोगों ने खुद ब खुद स्कूलिंग किया। मैं लेबोरेटरी में काम करता था, उस वक्त मैं देखता था जब मेरी तस्वीर, पुरानी तस्वीरें हैं, तो मेरे को लगता था कुछ उल्लूपना है इसमें, समझ नहीं आता क्या बात है। वाकई ये सोच रहा था कि मैं क्या गड़बड़ किया इसमें, समझ में नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं था, यहाँ कोई बता देता ना तो जल्दी हो जाता। इंस्टीट्यूट में ये होता कि बता देते भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं, मुझे कम से कम गलतियां सुधारने को 10 बरस लग गए। एक दिन याद आ रहा है ये करना चाहिए था, मुझे ये क्यों नहीं कर रहा, और उस दिन से मैं सुधरने लगा। तो इंस्टीट्यूट में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो 10 बरस है वो 1 महीने में कर देंगे, लेकिन सीखना बहुत ही जरूरी है
0: जी,
1: सीखना बहुत ही जरूरी है।
0: जो लोग वहां से सीख कर आए हैं इंडस्ट्री में, उनका परफॉर्मेंस तो आप देखते होंगे,
1: वो तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मॉडर्न जनरेशन का परफॉर्मेंस ही अच्छा है। मॉडर्न जनरेशन जो बच्चे आए हैं काफी हमसे ज्यादा होशियार, मैं अभी भी जिट को देखता हूँ तो मुझे याद आता है ये जिट चल कैसा रहा है, ऊपर से चल कैसा रहा है, पुराने हमारे टाइम में था ही नहीं प्लेन, जेट कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी के बच्चे तो कहते कि आप क्या देख रहे हैं, मैं कभी जेट देख रहा हूँ वो कैसा रहा है इतना भारी, तो उसमें क्या बात है, कोई भी बात नहीं, तो वो देखे हुए हमको कुछ नहीं है, नई बात नहीं है, इसलिए अभी की जनरेशन ही होशियार है।
0: एक सवाल मैं आपके उस दौर के बारे में करना चाहता हूँ जब आप फिल्मों में खुद, यानी उस वक्त सभी एक्टर्स जो थे वो अपने गाने खुद गाते थे, जिनको भी गवाया जाता था, तो क्या आपने म्यूजिक की बाकायदा कुछ तालीम हासिल की?
1: म्यूजिक की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मेरे फैमिली में म्यूजिशियंस हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं
0: जी।
1: हमारे मामा जो हैं, हमारी माँ, हमारी बहन जो मिसेस मुखर्जी, इन लोगों ने क्लासिक म्यूजिक सीखी है, तो वो सुनता था। मैं गाने का मुझे शौक था नहीं, लेकिन जब पिक्चर में आना भी कोई शौक नहीं, इत्तेफाक हो गया मेरा, तो मैं जब आया तो मुझे कहा गाओ, तो गाते बने नहीं, लेकिन सीखते सीखते जब सीखने लगा, जब करीब करीब लाइन पर आने लगा, तब तक अच्छे गाने वाले आ गए, तो अच्छा गाना छोड़ के बुरा गाना कौन सुनेगा, इतना अच्छा गाता नहीं था लेकिन गा लेता था बस, और कोई बात नहीं है।
0: अच्छा, देवभूमि के आशीर्वाद में आपने हरिनाथ चट्टोपाध्याय की जो 2 नज़्में बच्चों के लिए वो जो सुनाई हैं, लेकिन आपने जिस तरह रिसाइट किया है वो भी एक यादगार चीज है।
1: मैंने रेलवे, रेल के टाइमिंग के साथ किया है, झक झक झक झक झक इस तरह से किया, उनने किया था वो दही बेचने वाले की तरफ से, इसलिए अच्छा, जो कुछ भी हो तस्वीर में जो चीज देखी जाती है उसमें लोगों का ध्यान ज्यादा होता है, जो वो करते हैं स्टेज पर बहुत ही अच्छा करते हैं
0: जी जी,
1: और मैंने किया काफी उनका कॉपी किया, लेकिन मैंने ट्रेन करदम पर दिया था, वो आपने सुना था वो
0: जी,
1: नए नगर में बजता एक नए किस्म का बाजा, अब तो राजा गढ़ा बन गया और गढ़ा बन गया राजा, ये मैं बोला नहीं था वहां, क्योंकि उस वक्त तो बड़ी गड़बड़ चल रही थी, नसीब अपना टूटा फूटा, नसीब

0: अपना खोटा और जमींदार साहब का कुत्ता देखो कितना ताजा मोटा। ये जो चीज मैं डाला नहीं तो सौ रुपए की गड़बड़ चल रही थी
1: जी जी।
0: हाँ। लेकिन लोगों को अच्छा लगा, मैं ये क्रेडिट अपने ऊपर ले नहीं सकता, ये धर्मदास चट्टोपाध्याय क्रेडिट, और बुरा लगता तो मैं गाली भी उन्हीं को देता।
2: सावन भी आप सुन रहे थे मारूफ अदाकार अशोक कुमार के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे मैं भी गुफ्तगू थी अमीर खान भी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे मनोज कुमार पर फिल्माए कुछ फिल्मी गीत। प्रोग्राम की पहली पेशकश दो बदर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकार हैं रवि।

हिंदी फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। बोल संतोष आनंद की थी, मौसीकार थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामिन जी, जब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को, फिल्म है सन्यासी, मौसीकार हैं शंकर जयकिशन।

शोर फिल्म के नगमे आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब सुनिए एक और फिल्म का नगमा जिसमें मनोज कुमार की अदाकारी उरूज पर थी, वो फिल्म थी शहीद।

सर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम

विद्या फिल्म के नाम आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था एसडी बर्मन ने। और प्रोग्राम की अगली पेशकश आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया कल्याण जी आनंद जी ने, आवाजें मोहम्मद रफी, उषा टिमोती और साथियों की। फिल्म है हिमालय की गोद में।

जहाजों को नुकसान पहुंचाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना है। बहर अहमर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हूसी बागियों के हमलों के दावों के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया है और जहाजरानी के अहम रास्ते में रुकावट के बारे में तशवीश में इजाफा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर जहाजों पर हमले जारी रहे तो हूसियों को बड़ी फौजी कार्रवाई की वार्निंग दी है और कहा कि इसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा। आलमी तवानाई सप्लाई में तवील मुद्दत तक रुकावट के खदशात के पेश नजर ब्रेंट खाम तेल में 6% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया जो तकरीबन 100 अमरीकी डॉलर फी बैरल है। अकौमी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान ने कहा कि 27 जून से अमरीका के हमले फिर शुरू होने के बाद से 55 अफराद हलाक और 629 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें मई के बाद पहली मरतबा 100 डॉलर फी बैरल से तजावुज कर गई हैं। ऐसा आलमी तवानाई सप्लाईज के बारे में मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा होने के सबब हुआ है। ईरान पर अमरीकी हमलों में तेजी आने और यमन के हौसी बागियों की जानिब से बहर अहमर में तेल टैंकरों पर हमलों के बाद कल तवानाई के आलमी पैमाने ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। अमरीका ने सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी के मामले पर तशवीश के तनाजुर में भारत और दीगर 16 मुल्कों से होने वाली दरामदात पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिन नए महसूलात का हुक्म दिया है उनके जरिए 60 मुल्कों को निशाना बनाया गया है। जबरन मजदूरी के साथ दरामदात पर मौसर पाबंदी नाफिज करने में नाकाम रहने के बिना पर तिजारती एक्ट की दफा 301 के तहत ये कदम उठाए गए हैं। 10% शरह के महसूल का इतलाक भारत, कनाडा, बरतानिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 17 मुल्कों पर होगा। ये टैरिफ मुख्तलिफ मुल्कों पर आयद किए गए 10% आर्जी महसूल की जगह लेगा जिसकी मुद्दत कल खत्म हो गई। आज पूरे मुल्क में इनकम टैक्स का दिन मनाया जा रहा है जो भारत के इर्तिका पसीर टैक्स निजाम में एक संग मील की हैसियत रखता है। इस मौके पर इनकम टैक्स महकमे के कयाम और तरक्की को याद किया जाता है। कई दहाइयों से भारत के टैक्स निजाम में खातिरख्वाह तब्दीली की जा रही है। एक बड़ी तब्दीली 1981 में की गई थी जब टैक्स इंतजामिया के कामकाज में कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। टैक्स चालान का यह इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार टेक्नोलॉजी पर मबनी इसलाहत के लिए एक बुनियाद साबित हुआ। इसके बाद 1995 में मुस्तकिल खाता नंबर पैन का आगाज हुआ जिसकी बुनियाद पर माली लेन देन पर बेहतर तरीके से नजर रखी जाने लगी। इस डिजिटल इनकलाब की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल ऑनलाइन दाखिल की जाने लगी और इससे मुतालिक कामकाज में तेजी आ गई। ये फाइलिंग के सबब कागजी कामकाज में खातिरख्वाह कमी दर्ज की गई। इस कामकाज पर आने वाले अखराजात में भी कमी आई और टैक्स दहिंदगान को मुतालिका खिदमात हम वक्त दस्तियाब हो गई। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताई तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया। किंग चार्ल्स स्वयं ने क्वीन कैमिला, बरतानिया के वजीर आजम एंडी बुरहम और दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों के साथ डोनाल्ड रुकारे की मौजूदगी में ओवीओ हाइड्रो में कल शाम इन खेलों का आगाज का ऐलान किया। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचम बरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की कयादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए ओवीओ हाइड्रो एरेना में दाखिल हुई। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश, अजम मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वजीर अजम ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत, काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरकीब फराहम होगी। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के दरमियान इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात में तौसी के लिए कहा है। उन्होंने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब किया। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलकूद के मैदान में 3 माहिदों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में आवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अकवामे मुत्तहिदा की नुक्ताचीनी की है। उसने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक

0: मुनज़्ज़म तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। और अमरीका ने बहर अहमर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हौसियों के हमले के बाद ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियाती इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिल्ली ए पंजाबी सेवाएं शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समात फरमाओ सराय की प्रोग्राम झूक माही थी।

ਸੀਵਣ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਵੇ, ਯਾਦ ਹੁਸੈਨੀ ਆਵੇ, ਸੀਵਣ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਵੇ, ਯਾਦ

सखी मेरे कलब दा नारा अली अली, मेरे कलब दा नारा अली अली। बन जोगन लाल कलंदर दी, बन जोगन लाल कलंदर दी। एहो कहंदी फिरा मैं गली गली, मेरी रूह विच वसदा लाल सखी, मेरी रूह विच लव मेरी रूह विच वसदा लाल सखी, मेरी रूह विच वसदा लाल सखी। मेरे कलब दा नारा अली अली, मेरे कलब दा नारा अली अली। बन जोगन

0: तुसा सुनदे पे हावे सूफी संगीत रीना कौल जी वलो वल दुबारा हाजिर थी सू तब तक के लिए राम राम जी।
1: सामिन तुसी समात फरमा रहे सी सराइकी प्रोग्राम झोक माहिती शाम दे 5:30 बजे ने पेश कर रहे हैं देश पंजाब प्रोग्राम।

पर प्रकृति दा नियम इस दे उलट है। हर चीज अपने समय नाल परपक हुंदी है। सो जदों असी काली विच हुंदे आ ते साडी सोचण समझण दी जिहड़ी शक्ति है वह खत्म हो जाती है, घट जाती है। साडा दिमाग दूरअंदेशी नाल नहीं सोचता। इस दे नाल काम दीआं बरीकियां वल असी ध्यान नहीं दे पाउंदे और काली विच कीता काम अक्सर विगड़ जांदा है, जिसनों सुधारण लई बाद विच सानू दुगना समा ते जोर लगाना पैंदा है। साडी रोजाना दी जिंदगी दे विच इस दीआं कई उदाहरणां साडे सामने आउंदीआं ने। जिस तरह सड़क दे उत्ते जदों असी चलदे हां ते सब तो वधिया ए सखाण दा उदाहरण जिहड़ा आ उस समय ते सानू मिलदा है जदों सड़की हादसे हुंदे ने। अक्सर असी देखदे हां कि लोग कुछ मिंटां दी बचत लई गड्डी जां मोटरसाइकिल बहुत तेज चलांदे ने और लाल बत्ती टप्पदे होए गलत तरीके दे नाल ओवरटेक भी करदे ने। नतीजा ए निकलदा है कि ओह किसी वड्डे हादसे दा शिकार हो जांदे ने। इसलिए कहा जांदा है दुर्घटना से देर पली। काली दी स्पीड वी ओ टोआ टिब्बा इस तरह दा देखदे नहीं और डिग पैंदे ने। इसी तरह जे विद्यार्थी जीवन दे विच गल करिए तां प्रीख्यावां दौरान कई विद्यार्थी काली काली प्रश्न पत्र पूरा पढ़े बिना ही उत्तर लिखना शुरू कर दिंदे ने और इस जल्दबाजी विच उन्हां दा जिहड़ा प्रश्न दा असल अर्थ है ओह समझण तों उक जांदे ने जां कोई प्रश्न छड्ड बैठदे ने। नतीजे वजों चंगी तैयारी होण दे बावजूद भी नंबर घट आउंदे ने। अजकल एक होर गल करिए भी अजकल ठगी ते जालसाजी दे मामले बहुत वध रहे ने। लोग रातो रात अमीर होण दी काल दे विच बिना कुछ सोचे समझे गलत योजनावां दे विच पैसा ला दिंदे ने और एह काली उन्हां नूं बहुत वड्डे आर्थिक नुकसान दा कारण बनदी है। काली अगे टोए दा जे विरोधी शब्द करिए तां ओह सबर ते सहज है। वाकई ही कहिंदे सहज पके सो मीठा होए। जिवें हौली हौली पक्कण वाला फल सब तो ज्यादा मिठा हुंदा है, उसी तरह धीरज दे नाल कीता गया काम हमेशा फलदार और सफल हुंदा है। धीरज नाल काम करन वाला व्यक्ति हर कदम फूक फूक के रखदा है, आउण वालियां रुकावटां दा पहला ही अंदाजा लगा लैंदा है अते उस तों बचण दी लई पूरी तैयारी करदा है। सो जीवन दे विच कोशिश करिए कि जल्दबाजी तो बचिए, सो समझ के सबर दे नाल असी काम करिए। किसी भी काम नूं शुरू करन तो पहला उसकी पूरी योजना बनानी चाहिदी है। जेकर समा सीमा तय होवे तां काल करन दी लोड़ ही नहीं पएगी। इस तों अलावा समय दी संभाल सानूं आनी चाहिदी है। किसी भी जगह पहुंचण दा काम जां काम पूरा करन दे लई थोड़ा वाधू समा सानू रख के चलना चाहिदा है। इस तों अलावा जिंदगी दे वड्डे फैसले चाहे ओह पढ़ाई दी चोण होवे, किसे करियर दी चोण होवे या रिश्तियां दी, कदे भी भावुक हो के या काली दे विच ना लो। मन दी शांति यानी ध्यान अते योग राही अपने मन नूं असी शांत रखिए ते धीरजवान बनाइए। सो कह सकते हैं कि काली अगे टोए केवल एक कहावत नहीं सगो जीवन दा एक बड़ा ही वड्डा सच है। यह अखाण सानू चेतावनी दिंदा है कि साड़ी एक पल दी जल्दबाजी जेड़ी है ओ सानू बहुत वड्डी मुसीबत च पा सकती है और कई बारी ए भी हो जांदा है कि मुसीबत चों निकलन दे लई सानू बहुत मुशक्कत करनी पैंदी है, भावे कि उहदे लई सानू समा बहुत लगदा है, साडा आर्थिक पक्खों भी नुकसान हुंदा है। सो जिंदगी दे विच जे सफल होना चाहुंदे आ ते कोशिश ए करिए कि सही दिशा ते सबर संतुलन दे नाल असी

वधिए, हमेशा याद रखिए कि किसी भी काम नू सोच समझ के धीरज दे नाल पूरी तैयारी दे नाल करना ही समझदारी है, ता जो असी जिंदगी दे रस्ते विच आउण वाले टोयां तो बच के अपनी मंजिल ते सही सलामत पहुंच सकीए। सो ए गल जड़ी है आज दी पीढ़ी दे लई बहुत ज्यादा सुननी जरूरी है, क्योंकि आज दी नट भज वाली जिंदगी दे विच हर किसी नू बहुत ज्यादा काली है। सो काली ना करदे होए असी आराम नाल, सबर नाल, संतुलन दे नाल, पूरा दिमाग दे नाल, समझदारी दे नाल हर कदम पुटिए, ता जो असी सफलता प्राप्त करिए।

0: विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आप सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले हमारे तमाम ग्रामीण किसान भाइयों बहनों को राम राम।
1: देखिए शाहिद भाई, हम बात कर रहे थे कि बारिश का मौसम है और उस समय कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कि हमने डायरिया की बात की थी कि ऐसे में उल्टी दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे खान पान को अपने रूटीन में शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और जो पचाने में भी आसान हो, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए बहन, इसमें क्या है ना कि इस सीज़न में और हर सीज़न में वैसे भी फल सब्जियां और मिलेट्स जो होती ना, जो हमारा थीम भी है कि लोक संगीत के साथ हम इनकी भी बातें करते हैं, तो आज सिर्फ बातें नहीं हैं, अमल की भी जो है कि ज़रूरत है। तो फल सब्जियां जो है और मिलेट्स यानी मोटा अनाज जो है, जो हमारी संस्कृति का कह लें कि उसकी पहचान भी रही है ना, तो जब उसको खाया जाता था, जब वो चलन में था अच्छे, तो लोगों को दवाइयाँ ज़िंदगी में, कोई लोग कहते थे कि मैं तो ज़िंदगी में एक बार दवाई खाई थी, वो मेरे दादा तो दवाई खाते ही नहीं थे, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। हकीकत में वो इम्यूनिटी जो है ना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाती हैं। तो आपने बताया कि फल सब्जियाँ जो हैं आज की के दौर में जो है कि अभी देखा जाए तो सीज़न जिसको हम कह सकते हैं दौर के हिसाब से सीज़न, तो ये जो मौसम है, हर मौसम के लिहाज से जो प्रकृति है, हर मौसम के लिहाज से, हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो जहाँ पे है उसके हिसाब से वो उत्पाद देती है, ठीक है, उनका जो है कि सेवन करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अगर सब्जियों की बात करें तो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे घिया है, तोरई है, करेला है, इन सब में भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं।
0: इस सीजन की ये पहचान है, बेल वाली जो सब्जियां हैं, जो प्रतान वाली सब्जियां हैं, इनमें ये इसी मौसम में होती हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि इनके अंदर आपको विटामिन डी, उसके अलावा जो है कि कई तरह के मिनरल्स जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है इस सीज़न में ख़ास तौर से, वो प्रचुर मात्रा में मिलती हैं।
1: बिल्कुल। तो ज़रूर आप मौसम के अनुसार अपने खान पान का चयन करें, और जामुन इस समय बाज़ार में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी और इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अधिक है। इसमें हमारा जो ब्लड शुगर होता है कंट्रोल रहता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जामुन का सेवन भी आप बहुत कीजिए, क्योंकि ये एक औषधीय फल है जिसके खाने में भरपूर लाभ आपको मिल सकते हैं। और अगर हम अभी हमारा कृषि जगत कार्यक्रम जो होता है उसमें हम अपने किसान भाइयों के लिए विशेष जानकारी भी लेकर आते हैं। इफ्को के नाम से हम सब वाकिफ हैं। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए न सिर्फ कम दाम पर बल्कि उच्च कोटि के जो उत्पाद हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाता है। तो सुनते हैं ये बातचीत जिसका विषय है किसानों के लिए इफ्को एमसी की भूमिका। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, ये तो आप जानते हैं इफ्को किसानों की संस्था है, और भाई इफ्को किसानों की संस्था के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं एक सहयोगी संस्था है इफ्को एमसी, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देती है, प्रदान करती है, और ये उत्पाद हैं जो भी कोई बीमारी लगती है किसानों तक पहुंचाती है। क्या कुछ काम चल रहा है, और एक भारत सरकार का अभियान चला है खेती बचाओ, इसमें इफ्को एमसी की क्या भूमिका, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इफ्को एमसी के प्रबंध निदेशक मनोज वार्ष्णेय जी। मनोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे खेती बचाओ अभियान में आप उनको भी जागरूक कर सकें?
3: नमस्कार किसान भाइयों, इफ्को मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम जिसको इफ्को एमसी के नाम से जाना जाता है, कृषि रसायनों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्था ने ऑलरेडी पिछले साल 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए और अब इस साल व्यापार में कार्यरत है। आपके इस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि इफ्को एमसी के कुछ विषय जिन पे काम करता है और उनको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए तो मैं सिर्फ चार शब्दों में इफ्को एमसी की भूमिका को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले है सही दवा। सही दवा मतलब आपके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए जिन कृषि रसायनों की जरूरत पड़ती है, हम सभी उच्च कोटि के कृषि रसायनों को आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करती है इफ्को एमसी। सही दवा के बाद दूसरा है सही दाम। बाजार में जितने भी कीटनाशक या कृषि रसायन मिलते हैं बहुत ज्यादा आप लोगों से दाम चार्ज किए जाते हैं, और इफ्को एमसी का जो पूरा

उद्देश्य है आपको सही दवा सही दाम पे उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इसमें सबसे अगर खास बात देखा जाए तो सबसे ये है कि इफको एमसी के सारे उत्पाद फिक्स्ड एमआरपी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिक्स्ड एमआरपी से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जो दाम उसके ऊपर अंकित है उसी दाम को आपको दुकानदार को या सहकारी संस्था को पे करना है, तो जिससे आपको सही दवा सही दाम पर उपलब्ध होती है। साथ में तीसरा चीज है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता मतलब जितने भी कृषि रसायन है इफको एमसी की क्वालिटी पॉलिसी है। तो अगर हम इन तीन चीजों को देखा जाए, सही दवा सही दाम उच्च गुणवत्ता, ये तीन ध्येय है इफको एमसी के किसान को और आपकी खेती के संरक्षण को, जो भी आपकी मेहनत है उस मेहनत को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। और इन सब के साथ एक और अनूठा पैगाम है इफको एमसी का, किसान सुरक्षा। इफको एमसी के कोई भी उत्पाद लेते हैं आप, उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। 16,000 रुपए तक के उत्पाद इफको एमसी के अगर आप खरीदता है कोई एक किसान, तो उन उत्पाद खरीदने पे करीब 1,00,000 रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा जो है किसान को मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरत है आपके पास, आपके पास एक बिल होना चाहिए और इसकी जो समय सीमा है पूरा 1 साल है। 1 साल में आप टोटल 16,000 रुपए के अगर उत्पाद खरीदते हैं 1,00,000 रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इन सब आधारों के ऊपर इफको एमसी खड़ा है और हमें बहुत हर्ष है कि इफको एमसी ने पिछले साल 2025-26 में रिकॉर्ड टर्नओवर किया था। तो इसमें आप सब लोगों का प्यार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार इफको एमसी को इतना पसंद करने के लिए। रही बात खेती बचाओ अभियान, जैसे इस समय ग्लोबल वॉर सिचुएशन की वजह से कृषि रसायनों के दाम में काफी इजाफा हुआ है, तो हम अपनी कंपनी की तरफ से प्रयास कर रहे हैं जैसे भी करके आपके उत्पादन कॉस्ट को, आपकी खेती की लागत को कैसे कम रख सकें। तो इसमें हमारा जो प्रयास है, हम समय से कृषि रसायनों को या उनके टेक्निकल्स को या फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट को टाइमली परचेज कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में आपके कृषि उत्पादन में कोई भी तरीके की समस्या ना आए। तो ये ऐसा इफको एमसी का इस समय प्रयास चल रहा है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा, वो ये है कि आज के समय में जैविक उत्पादों की बहुत जरूरत आ रही है। मार्केट इंक्रीज हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जैविक उत्पाद मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इफको एमसी ने भी अपने जैविक उत्पाद बाजार में उतारे हैं और जिनका नाम है जेन नेक्सा। जेन मतलब बैलेंस और नेक्सा मतलब नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो जेनेक्सा श्रृंखला को बाजार में उपलब्ध कराया है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जेनेक्सा सीरीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिससे कृषि रसायनों के साथ साथ जैविक उत्पादों का, जिसको बोलते हैं बायो इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन की इस कॉन्सेप्ट को, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जेनेक्सा श्रृंखला के उत्पादों का भी प्रयोग करें अपनी खेती में। इसी में एक उत्पाद है माइकोजेन। माइकोजेन जो एक बहुत ही उच्च कोटि का माइकोराइजा प्रोडक्ट है। हमें पता है आज के समय में खादों की उपलब्धता में यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के चैलेंज हैं। तो अपनी फसल के पोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकोजेन जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से माइकोराइजा जड़ों के ऊपर एक बाहरी और एंडोमाइकोराइजा डेवलप होने की वजह से आपके पास फायदा क्या होगा कि कम पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगा और साथ में आपके उत्पादन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देगा। तो मुझे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन ऐसे जैविक उत्पादों का आप इस्तेमाल करें, और जिससे खाद की रहने वाले संकट को या खाद की कमी या उसकी कम उपलब्धता को भी आप एड्रेस कर सकें। रही बात आने वाले समय में किस तरीके का प्रोडक्शन, मॉनसून बहुत, जो आईएमडी की फोरकास्ट के हिसाब से कि मॉनसून कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सचेत रहें और सही तकनीक से अपने कृषि और अपने फसल उत्पादन को करें। और अगर
अगर हम सचेतता के साथ और सही ज्ञान के साथ अपना फसल उत्पादन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से अपने एक तो फसल उत्पादन को खोएंगे नहीं और खेती से होने वाली आपकी आय किसी भी तरीके

0: तरीके से कम नहीं होगी।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि सही तकनीक और सही समय पर जानकारी के द्वारा आप अपनी खेती को बचाएंगे, खेती में काम करेंगे तो जरूर आप खेती के साथ साथ आप अपने उत्पादन को भी बरकरार बनाए रखेंगे। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेत बचाओ अभियान में इफको एमसी की भूमिका। इस पर बातचीत कर रहे थे मनोज वाष्णेय और जानकारी दे रहे थे इफको एमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज वाष्णेय। तो किसान बहनों भाइयों, अब आइए आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर से ये रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत। और सचमुच हमारे किसान भाई हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं और हम तक वो अन्न पहुँचता है, तो वाकई ये तारीफ के काबिल ही काम
1: सही,
0: है।
1: ब्रह्मपाल
0: बिल्कुल
1: नागर ने सच कहा कि किसान हमारा दुनिया में
0: अन्नदाता
1: दूसरे
0: है।
1: दर्जे का
0: बिल्कुल
1: भगवान है। वो जो है कि ये अनाज भी पैदा करता है, पेट भी भरता है, दवाइयों के लिए जो है कि औषधियों की जो वनस्पतियां हैं उनको भी पैदा करता है और कई तरह से पोषण देता है, तो
0: बिल्कुल
1: वो भगवान हुआ।
0: बिल्कुल। और देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना की अगर हम बात करें तो एक ऐसी योजना है जो कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने में लगी है। इसके तहत उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उनके रेट भी बाज़ार में अच्छे मिलते हैं। तो
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल सही कह रही हैं प्रियंका बहन। दरअसल ये जो है कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना जो है ना, इसमें जो है कि दरअसल जो कृषि जो है कि ग्रेजुएट्स हैं, BSc AG करने वाले ऐसे लोगों को जो है कि इनकी मदद ली जाती है और इनको साथ मिला के उन्नत तकनीक जो है, ठीक है, जैविक तकनीक मतलब केमिकल रहित जैविक खाद, जैविक तरीके से पारंपरिक और आधुनिक जो है कि ट्रीटमेंट के साथ जो है कि कृषि पैदावार करना, ताकि वो गुणवत्तापूर्ण हो, अधिक उत्पाद मिले और बड़ी चीज़ यह है कि उसकी ऊंची कीमत मिले। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये कि हमारे किसान भाइयों बहनों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पैदा करें और कैसे इसकी मार्केटिंग हो उस लेवल तक, मतलब इसको कह सकते हैं कि किसान एवं ग्रामीण उद्यमिता, ये स्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये बड़े पते
0: बिल्कुल
1: का
0: बिल्कुल।
1: बहुत ही
0: इसमें मुख्य रूप से जो बच्चे इसमें डिग्री ले रहे हैं, जो स्नातक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ डिग्री न लेके उनको ऐसा कौशल विकास दिया जा रहा है जिससे कि वो उद्यमिता की तरफ जाएं और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आगे उनको रोजगार की संभावना खुद भी मिले और दूसरों को भी वो रोजगार देने वाले बने।
1: ये तो है ही। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसान बहन भाई जो भी हैं उनको ये पूरी एंड टू एंड, मतलब कैसे बीज बोया जाए, कैसे खेत तैयार किया जाए, कैसे कटाई की जाए और कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, मतलब बीज बोने से लेके पैसा हाथ में पाने तक पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ये उसी की का प्रशिक्षण, उसी के मतलब उद्यमिता विकास है एक तरह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और देखिए कल शनिवार है और शनिवार को आपको याद दिला दें कि हमारा लोक संगीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे श्रोता हम तक अपनी पसंद के गीत और कलाकारों को पहुंचाते हैं और हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने संबंधी फ़ोन नंबर और रिकॉर्डिंग का टाइम भी बताया जाएगा, तो 6:30 पर सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: उमरिया मुफ्त में हुई। ये उपदेश आप सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज में। तो ग्रामीण किसान बहनों भाइयों, इसी के साथ आपसे हम लेते हैं इजाजत। आप सभी को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं कुछ गीत गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत सी गजलों का। ये पहली गजल आप सभी के नाम चंदन दास की आवाज में।

0: श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे गजल और कव्वाली के अंतर्गत खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंजूरी दी गई। विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की वार्ता करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
2: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कड़े विधेयक को लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद भवन परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। DMRC ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सवेरे 7:30 बजे से जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था उनमें से 2 मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 जारी कर दी है। इसमें भारत में टेलीविजन रेटिंग विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज श्री वैष्णव ने कहा कि ये नीति दर्शकों के मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करती है।
4: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 ने 16 जनवरी 2014 के भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का स्थान ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें नेटवर्थ मानदंड को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए करना, कनेक्टेड टीवी और OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर प्रौद्योगिकी तटस्थ दर्शक मापन और मीटर वाले घरों की

0: उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में लघु उद्योग भारती, उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने और उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की प्रगति के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए दो अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि गाजीपुर ड्रेन में वर्षों से भारी मात्रा में गाद जमा है, जिससे इसकी पानी ले जाने की क्षमता में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नालों में इसी तरह की आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गाद निकालने का काम तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने आज विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए भंडार रखने की अनुमति देने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि इस प्रावधान को उसके मूल उद्देश्य और भावना के अनुरूप लागू किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव भी दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज नीट यूजी 2026 के शीर्ष 11 विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प नए भारत की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अत्यंत गर्व का विषय है कि नीट यूजी 2026 में 11,20,000 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ये फेलोशिप राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े ने युवाओं को सार्वजनिक नीति, सुशासन और संसदीय प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इन युवा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह, नए विचार और समर्पण भाव अगली पीढ़ी के नेतृत्व पर देश को, विश्वास को और मजबूत करते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकता अनुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल है, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने बताया कि कावड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कावड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों और सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि

0: कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, PCR तैनाती और दुर्घटना रोकथाम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी में आने वाला प्रत्येक शिव भक्त स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और अपनत्व से घिरा हुआ महसूस करे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को आज सवेरे एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महापौर कार्यालय ने बताया कि आज सवेरे 10:23 पर एक अज्ञात स्रोत से ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली। धमकी मिलते ही बिना किसी विलंब के संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। महापौर कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय के प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन जांच की गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर अन्य उपकरणों में लगाते थे और UPI सक्रिय कर खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद भी धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से 10,000 रुपए नकद के साथ 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान आयकर विभाग के कार्य और उसके योगदान का स्मरण किया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई और दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है, ठीक लीजिए 8:16। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ प्यारे से फिल्मी गीत, जिसमें आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का हम आशा जी के साथ, भूपेंद्र की आवाज के साथ, और गीत किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतमाली का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हम समाचार, पहले हिंदी अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल

0: खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की 3री और 4थी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में।

0: मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के

0: अंगई क्षेत्र हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both houses of parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth

नेटिव वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें।

प्रोग्राम के आगाज में अभी आप समाप्त फरमा रहे हैं दयाशंकर नसीम की ये खूबसूरत गजल। गजल सरा है ए हरिहरन।

बीमारियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए अहम इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन इस मामले पर पार्लियामानी बहस में रखनांदाजी करती है तो उसे मुल्क के नौजवानों के गुस्से का सामना करना होगा। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीजेपी वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक सीजेपी के मुतालिबात को इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन अहम मुतालिबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को खत्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वक्त के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बेल्लारी गुंटकल सेक्शन की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है जिस पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तामीर से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 46 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। आज से पहले नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान कनेक्टिविटी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन स्कीम की काबीना की जानिब से मंजूरी की भी इत्तला दी जिसके तहत मुल्क में तीन मखसूस केमिकल पार्क कायम किए जाएंगे। भव्य रसायन स्कीम पर 3030 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस स्कीम पर साल 2026-27 से साल 2030-31 तक 5 साल की मुद्दत के लिए अमल किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने बताया कि मरकज हर पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया कराएगा। ये 1000 करोड़ रुपए मुतल्लिका रियासती सरकार की जानिब से 500 करोड़ रुपए की कम से कम रकम लगाए जाने की सूरत में मुहैया कराए जाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामलों पर आज लगातार पांचवें दिन शोरगुल के बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मानसून इजलास के आज लगातार पांचवें दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के बाद रखना पड़ा। इसके साथ ही इजलास का पहला हफ्ता अपने अख्तताम को पहुंचा और इस दौरान कोई खास काम नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। शोरगुल के दौरान दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज कौमी ताजीम की तोहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से आयद मुख्तलिफ शराइत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदरनशीं और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अरकान दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रखनांदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलकत थे। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी माहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया के उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालिमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसा रहा है। उन्होंने कहा कि सालिमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आजादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे।
شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. گجرات کے مختلف ضلعوں میں معمولات زندگی

0: शूटिंग में भारत की सैन्यम ने चीन में ISSF आलमी कप में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। 22 बरस की निशानेबाज सैन्यम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैन अवी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तर खेलों के दूसरे दिन भारत के श्रीहरि नटराज मर्दों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नटराज ने हीट्स के दौरान 25 सेकेंड और 52 मिली सेकेंड की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे 16 तैराकों में 14वां मुकाम हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले आज रात होंगे। इससे पहले भारत के रवि वीरा वेंकट बुडिंग्रेना और अली इमाम मर्दों के S13 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा तैराकी मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील दिए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसवदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के वफद से मुलाकात की। इकतसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखनांदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

यह है कि अहम एहतियात यह है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्गों और कम उम्र के बच्चों को शहद ज्यादा देना मुफीद नहीं माना जाता है। इसके लिए भी अपने डॉक्टर से ही मशवरा करें। बाजार में मुख्तलिफ अकसाम के शहद दस्तयाब होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि मुस्तनद और खाली शहद में ही खरीदें। खाली शहद न सिर्फ बेहतर जायका देता है बल्कि इसके गजाई खसूसात से भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। आखिर में यही कहेंगे कि बरसात के मौसम में मुतवाजन गजा, मुनासिब आराम, साफ सुथरा माहौल और एहतियाती तदाबीर के साथ अगर शहद को अपनी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बनाया जाए तो यह सेहतमंद तर्ज जिंदगी में माविन साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि सामिन आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको किसी तरह का मसला है या कोई बीमारी की वजह से कोई दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता कीजिएगा, वही बेहतर मशवरा देंगे। यह सिर्फ मालूमात है, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक्सटेंड देयर लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 300 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी। And Cabinet approved the Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की सुस्ती आई। निफ्टी 23,800 के स्तर से नीचे पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 विशिष्ट केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना को स्वीकृति दी।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज शुरुआती नुकसान की भरपाई की और 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 332 अंक नीचे आकर 76,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक लुढ़ककर 23,767 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कारोबार की नकारात्मक शुरुआत देखी गई।

0: पैमाने पर बिकवाली के कारण सत्र के पहले हिस्से में दोनों प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निचले स्तरों पर खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से काफी रिकवरी की।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस पेड देयर इनिशियल लॉसेस एंड एंडेड 0.43% डाउन टुडे। सेंसेक्स ड्रॉप्ड 332 पॉइंट्स टू एंड एट 76,060, व्हाइल निफ्टी स्लिप्ड 102 पॉइंट्स टू क्लोज एट 23,767। इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द एनएसई, द मिड कैप 100 इंडेक्स लॉस 0.1% एंड द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फेल बाय 0.3%। अर्लियर द मार्केट्स ओपन्ड ऑन अ नेगेटिव नोट अमिड हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। Both the stock market indices traded under pressure during the first half of the session amid broad-based sell-off. However, as the day progressed, the Sensex Nifty recovered sharply from the day's lows, supported by buying at low levels and drop in crude oil prices.
0: सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों को देखा जाए तो एडर्नल में 2.3% से ज्यादा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% और बजाज फाइनेंस में 2.1% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में लगभग 2.1% की बढ़त हुई, आईटीसी में 0.8% की तेजी आई और एक्सिस बैंक में 0.6% की बढ़ोतरी हुई।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 19 आउट ऑफ द 26 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। अमंग द टॉप लैगर्ड्स ऑटो ड्रॉप 1%, टेली कम्युनिकेशन स्लिप 0.9% एंड पावर fell nearly 0.7%. In contrast, focused IT advanced 1.3%, IT as well as PSU banks rose over 0.6% and insurance gained more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,124 companies advanced, 2,053 companies declined and 208 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में लगभग स्थिर रहा और ₹96.56 के स्तर पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस सप्ताह अगर कारोबार पर हम नजर डालें तो लगभग हर दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछला सप्ताह थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये सप्ताह निवेशकों की दृष्टि से अगर देखें तो लाल निशान उन्हें ज्यादा देखना पड़ा। कौन कौन से प्रमुख ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली?
2: एकदम आपने सही कहा निखिल जी, अगर आप 5 दिन के ट्रेडिंग देखें तो करीबन 2% की गिरावट रही और हर दिन हमने गिरावट देखी और उसका प्रधान कारण यही है कि और ये जो गिरावट जो है ये अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा साप्ताहिक गिरावट थी
0: जी।
2: और इसका प्रधान कारण ये था कि जो विश्व स्थिति जो है वैश्विक स्थिति उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और भी गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से यूएस और ईरान का जो मसला चल रहा है वो एक समय तो ये लग रहा था कि ये शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, पर वो और भी वातावरण और भी गंभीर हो जा रहा है और इसी कारण स्टॉक मार्केट एक तरफ और क्रूड ऑयल प्राइस दूसरी तरफ, दोनों में जो जो एक टेंशन डर भी कह सकते हैं उसी के कारण हम जो पिछले 5 सत्र में जो हमने देखी जो गिरावट, यही इसके प्रधान कारण है। कोई अंतर्देशीय कोई कारण इसमें नहीं है, ये पूरी तरह से एक एक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भरशील ये डेवलपमेंट है। हालांकि हमने आज जो मार्केट में देखा
0: जी।
2: उसमें एक एक एक सिल्वर लाइनिंग नजर आई, वो ये लगा कि जब मार्केट नीचे आ गई तब आधे मार्केट में दिन के जो पिछले अंतिम समय में मार्केट इतनी नीचे आ गई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वापस आ गए और खरीदना शुरू किया। उससे जो मार्केट की जो पहले हाफ में जो जो गिरावट थी वो उतनी गिरावट से वो बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब यही मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट एक पॉइंट के नीचे आ जाए तो जो इन्वेस्टर की जो एपेटाइट जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये एक पॉजिटिव रीजन है, पर ये दर्शाता है

0: for the coming week.
1: We saw that in the fourth quarter. We're seeing that in the first quarter regarding the earnings results. Quite interesting that you brought about those metrics for the benefit of our listeners on Akash Vani. Even the margin has actually gone up if we not just take into account net profit and revenue yep. and sales performance. Banking results have also been declared. Non-performing assets are also coming down marginally. But the news that I want to bring to your mind is information technology. They have seen a fall in valuation before. They saw a rise in valuation today. To what extent do you see the US dollar index, which is at a 101.43, actually influencing, you know, short covering in this sector, the IT sector?
0: Well, to a great extent, the IT sector is influenced by what is happening in the technology space, which is the AI, the artificial intelligence space. Most of India's tech companies are battling that demon, if I may use that expression. Yes, the dollar index does play a role, but I think the bigger factor is how AI will impact its margins. One associated point that you raised about the banks and the financial sector, they have done well, but they're not doing well in the stock market. It's a very, very interesting phenomenon that we are witnessing, and that is the reason. The reason is probably that going forward, and the stock market is not a lagging indicator, is a forward-looking indicator. Going forward, the banking sector might see its margins under squeeze. So today's stock market, if you look at the banking sector stocks, they have they haven't done well at all compared to the rosy the results that they came out with last week. And the reason is that their margins are likely to come under squeeze, and which is why the stock market is not giving them a thumbs up, rather they're giving them a thumbs down.
2: AKB, अगर स्मॉल को भी मिड कैप की हम बात करते हैं तो आजकल मुनाफा वसूली कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगी है, तो इसके पीछे क्या है? ये रीजन है कि लोग अब जोखिम लेने की बजाय सेफ ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें लार्ज कैप में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और कारण?
0: नो, आपने एकदम सही फरमाया कि जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स से जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी पिछले चार महीने में, और पर इस हफ्ते में हमने मिड कैप्स में भी काफ़ी प्रेशर में वो स्टॉक्स रहे, और उसका कारण आपने एकदम ठीक कहा कि लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरी कारण जो मैंने अर्जुन जी को भी नहीं मैं बता सका, तीसरा कारण ये है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस की लाइनअप है और बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं, और जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्या करते हैं कि वो जब भी वो स्टॉक मार्केट में मौका देखते हैं वो प्रॉफिट बुक करके वो अपने आप को पोजीशन में लाते हैं, जिस तरह से वो किस तरह से नए आईपीओ में इन्वेस्ट करके उन आईपीओ में से और भी पैसा निकाल सके, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट में जो नरमी देखी हमने उसका एक कारण है।
2: आगे बढ़ते हैं, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया, और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था। यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी। जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, जबकि मई में ये 1.5% थी। एकेबी, कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला।
0: सही कहा आपने, एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो प्राइस इंडेक्स

0: जो डेवलपमेंट वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी. हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स वो जापान में दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी एक एक घटना है, क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन का नामो निशानी है बहुत दिन से. अगर इन्फ्लेशन आता है तो हालांकि आम जनता को क्षति पहुंचती है, टेंशन होता है हम लोगों को, पर जो इन्वेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक प्रॉफिट की एक एक एक एक डायरेक्शन मिलती है, प्रॉफिट अर्निंग की एक इंडिकेशन होती है. और मैं ये समझता हूं कि ये इन्फ्लेशन जो 1.6% की जो इन्फ्लेशन जो बढ़कर 1.4% से आ गई है, ये भी दर्शाता है कि जापान में डिमांड की विजिबिलिटी आई है. और ये मैं समझता हूं जापान विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थनीति है, उसके लिए ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट में कहूंगा. हालांकि स्टॉक मार्केट में आज इसका ठीक तरह से वेलकम नहीं किया.
1: इन मोर न्यूज, द यूएस हैज इंपोज्ड अ 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड 16 अदर कंट्रीज ओवर कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर इन सप्लाई चेन्स. यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर जेमिसन ग्रियर सेड द न्यू टैरिफ्स ऑर्डर्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टारगेट 60 कंट्रीज अंडर सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट फॉर फेलिंग टू इफेक्टिवली बैन इंपोर्ट्स मेड विद फोर्स्ड लेबर. द टैरिफ replaces temporary 10% worldwide levies that expired yesterday after the US Supreme Court struck down Trump's earlier reciprocal tariffs. So what's your take on this? Because now we have an idea of the baseline tariff and what is being imposed as well based on this Section 301 of the Trade Act. What would be the next step? Because there seemed to be a variation across sectors.
0: Well, I think this is a limited positive news for India. Limited because we still don't know what awaits the Indian economy in terms of the US-India Trade Pact negotiations that are still going on. But it's positive because we are earlier slapped with a notice of 12.5%. Now we are being bracketed along with 60 other countries at 10%. In terms of the impact on India's exports, it will be less than what was earlier feared. Please remember that this was possible because the government came out with a DGFT notification that said that India will also levy taxes on imports from countries that use forced labor. Now, India had not done it earlier. Now, this was done to essentially assuage and ensure and convince the US that India is also very, very concerned about forced labor, and that is what is happening right now.
2: श्रोताओं आपको बता दें, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज देश में तीन विशिष्ट केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, जिसे हम भव्य रसायन योजना भी कह सकते हैं, उसको स्वीकृति दे दी है. इस योजना की घोषणा 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी. इस योजना का कार्यकाल फिलहाल 5 साल के लिए रखा गया है. केंद्र सरकार हर पार्क के लिए 1,000 करोड़ रूपये तक की सहायता देगी, जबकि संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रूपये का योगदान देना होगा. एक भी इस योजना का भारत के लिए कितना महत्व होगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम काफी चीजें विदेशों से आयात करते हैं.
0: देखिए, हमारी जो आत्मनिर्भरता का जो एक प्रोजेक्ट है, उसी का ये मैं एक समझता हूं कि एक उसका एक ही एक कड़ी है ये. और ये केमिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर शायद अंतर्गत होगा
2: जी.
0: और इससे जो हमारी जो आयात के ऊपर निर्भरशीलता जो है उसमें कमी होगी, और वो हमारे लिए, देश के लिए, अर्थनीति के लिए एक सुविधाजनक बात है.
1: In more news, India's foreign exchange reserves rose by $1.08 billion to over $676 billion for the week ended 17th of July. According to the data released by the RBI, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased over $4.5 billion to over $551 billion. The RBI said gold reserves declined by $3.48 billion to over $101 billion. बिलियन

0: dollars, President Draupadi Murmu had said regarding India and Romania. After delegation-level talks with a Romanian counterpart, Nicuso Dan, President Murmu said, India and Romania have set a target of doubling bilateral trade over the next 3 years.
1: India-EU free trade agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. Earlier, Brent crude rose above $100 a barrel for the first time since May amid concerns over global energy supplies stemming from West Asia conflict. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading over 2.6% down at $89.74 per barrel when reports last came in. And now moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1% up at 1,43,670 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% up at 2,22,490 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 1,42,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.1% ऊपर आकर 2,21,901 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एकेबी गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
3: देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है थोड़ी बहुत उनमें लोगों की रुचि भी बढ़ जाती है, हालांकि वो रुचि थोड़ी कम हो गई थी पिछले कई दिनों, पर जब स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत हलचल मचती है, थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, उससे मार्केट में नीचे आता है, दबाव में आता है मार्केट, तब गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड भी ज्यादा एक वृद्धि होती है और इसी वही आज की गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में दिख रहा है।
2: जी, एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices extend their losing streak. Sensex declines over 300 points. Nifty settles below 23,800. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And the cabinet approves a Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
2: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। शब के 10:30 हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामिल इरशाद का। लेकर हाजिर है आपका मेजबान मोहम्मद इमरान। प्यार भरा आदाब कबूल कीजिए।

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश और कृष्णा गोरखे, प्रशांत शिंदे और ऋषि शिंदे, आप हैं पंधारपुर सिटी से, सैयद मसरूर, शाहन हसन और नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से, राम लक्ष्मण चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी और काजल मीनाक्षी, आपका भी ईमेल आया, अकाली दीवान मध्य प्रदेश से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब और डबके रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुलकर और सदानंद मंदुलकर, आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं दिल्ली का दादा फिल्म से ये दो गाना, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है इन दत्ता ने और पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव, और सुनना चाहा इस नगमे को गुन्नू लाल रजक आपने लिखा है और केआर साहू, अश्वनी वर्मा, और कहां से लिखा है ये नहीं बताया आपने। चलिए आगे, पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरिबा हबीबा। वाटिंडा रोड मंडी डवली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, और नवीद हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी और नवीद हसन अब्बासी, मरहरा दरवाजा एटा से अनिल जैन और जैन साहब आपने लिखा है। मलियाना सरदाना मेरठ से इस नगमे को पसंद करते हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मस्टर। बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी का ईमेल हमें मिला, और हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बुरखे, नंदा बुरखे और उत्तम जमदाड़े। लौडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और प्यारी सिपोती भुवनेश्वरी देवी। गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार और मनीष पवार, और इसी नगमे के लिए ईमेल यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे की जानिब से। राम रतन टाकी कुंडलवाड़ी से गंगाधर सोनकर और वीर लक्ष्मी सोनकर का ईमेल हमें मिला। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक और गीतिका नायक, सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और पोता बाबूशिव चौरसिया फरुखा, बाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से, और एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पपी किरण खुराना और लव्य। महनगर उमरखंड माला से अभिजीत गोहकर आई, श्रीमती सरिता गोहकर और अर्जुन गोहकर डुग्गू। मरिया गरी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द और सरिता मालवीय। तहसील रोड गंज डुंडवारा से कैच रहे गुड़िया बेगम और हमाद जमील। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर और बेबी प्रियांशी, और शेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से ये है तेजस इसकाले, लोकेश इसकाले और संतोष इसकाले की जानिब से ये मेल। गांव पांच इंडी पतौड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल और अंकुर जनागल। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया और पेंटर बाबू, और राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमेकर, हर्षा रमेकर और अक्षय रमेकर। कृष्णा कॉलोनी हांसे से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बबू डब्बू। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सलोचना भगत। मोताला बाजार से बाबू बबलू ठेकेदार, शेख सगीर और शेख वजीर। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, और बंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश रामभरे, वैष्णवी रामभरे और जानवी रामभरे। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

आइए दोस्तों सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये दो गाना। फिल्म है अनजाना। नगमा निगार आनंद बख्शी, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, पसंद किया है आप दोस्तों ने। लौडल्ला जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और प्यारी पोती, मैंने ये नाम शामिल किया हुआ दोस्त दोबारा आ रहा है। गंजुनवारा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी और मोहम्मद अयान अंसारी। बिलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमार युक्ति देवदास। रेलवे रोड गंजुनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नाजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी। और गांव फ्रांस हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कुमार और तुषार सिंह। नंदकिशोर घटे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा आप हैं बिरशहर महाराष्ट्र से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और साईनगर अरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए। और अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह और राकेश कुमार आप हैं जमशेदपुर से। बाबा साहब वरुदे, आदित्य पी चंद प्रभा वरुदे आप जरूर वरुद से। सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे और श्रद्धा मलोदे साईनगर शिरडी से। और निवासा महाराष्ट्र से अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे और आरती लोखंडे। और ये है मुकेश कासलेकर का ईमेल, आप हैं वरुद जिला अमरावती महाराष्ट्र से। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़ का ईमेल हमें मिला। और जामिया

सुनिया विशाल सपकाल देवरी वाडापारा से क्यार साहू आकाश और कमलेश जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह सुनीता सिंह और अंकिता सिंह बलारशा से सूरज लोखंडे प्राची लोक माफ कीजिएगा सूरज लोढ़े प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े टैगोर गार्डन ने दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा और इसी नगमे के लिए ईमेल आया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा की जानिब से सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: राजधानी रायपुर से नीलू मेघनीलम, डॉक्टर वन्ना कुमार और बिट्टू कुमार, और इस नगमे को पसंद किया संजय बमारकंडिया, ममता मारकंडिया और बेबी किट्टू। निसार सलमानी, नौशा सलमानी और बेबी आलिया, आपका ईमेल हमें मिला धनौरी तिलीवाला से, और इस नगमे के लिए लाल कुर्ता रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा, और बटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर और सचनूर। बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से ईमेल है हम तक आया, यह है नंद कुमार ठाकुर, परमिला ठाकुर और खुशबू। जगौदा से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और कुमारी पूजा खटक। साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब। पुराना तालाब डुमराव से वलवी अंसारी, सुल्तान अंसारी और आसमान आज अंसारी, और बुरवा के नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा। सामीन अभी आप सुन रहे आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से फरमाशी फिल्मी नागमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। ये प्रोग्राम अभी जारी है, सबके 11 बज चुके हैं। ये वक्त होता है खबरों के बुलेटिन का।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, बरसगीर की खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के वफद से मुलाकात की। इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दे दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखनांदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है, और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में संयम ने चीन में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज एक बिल के मसौदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने की बात कही गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई और बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई। राय ने आकाशवाणी के खबरों के शोबे को बताया कि मुजवजा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैसेज के जरिए वज़ीरे आज़म मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वज़ीरे आज़म ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CJP वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालिबात को इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि CJP ने 3 अहम मुतालिबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को खत्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इम्तिहानात में धांधलियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के हाथे में नामा निगारों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए अहम इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन इस मामले पर पार्लियामानी बहस में रखनांदाजी करती है तो उसे मुल्क के नौजवानों के गुस्से का सामना करना होगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे उस वीडियो को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के एडिशनल

0: दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के मीडिया की उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुदतकार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और शूटिंग में भारत की संयम ने चीन में ISSF आलमी कप में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। 22 बरस की निशानेबाज संयम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैनुल अक्वामी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम अपने तमाम सामाइन का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। पेश प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे।

आइए दोस्तों सुनते हैं जहां आरा फिल्म से पलक महमूद की आवाज में ये नगमा। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने और

किया है आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र भाई और रुद्रा, अच्छा रुद्र भाई रुद्रा और रानी मुकेश। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख, फलक तबस्म शेख और बीबी अलसवा शेख। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सुनाली नारंग। आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ तो आप दिल में हैं। स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नागली डेरी नजबगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक भी साथ में। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, सावा नवाज और हसन नवाज का ईमेल मिला। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। और ये अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्य कुमारी भी हैं। आप है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। बलारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर, मास्टर ओमी भारशंकर। कंवर कॉलोनी बढ़ाड़वा जिला खड़गांव मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली, मीना श्रीमाली। और हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति भारती। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। प्रेम जोड़ा, मंजित कौर जोड़ा और ये है करणवीर करण। और सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोदरा राम टेके, शरिया राम टेके। और नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तला जहानाज और फरह जहानाज। सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा तलत महमूद की आवाज में, फिल्म जहां आरा से।

0: है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन को मंजूरी देने का, जिसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। लगभग 3030 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना अगले 5 वर्षों में लागू की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बेल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी। लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना वर्ष 2028-29 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत करीब 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और लगभग 99 गांवों के करीब 7 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों फैसलों के दूरगामी प्रभाव औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और साथ ही आर्थिक वृद्धि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। आपका बहुत स्वागत है सर आकाशवाणी में।
1: जी नमस्कार।
0: कैबिनेट ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क, ये पहला फैसला है जिसको स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना की मंजूरी दी है। अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, तो आप इस फैसले को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए कितना अहम मान रहे हैं अभी?
1: बिल्कुल, ये जो आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। रसायन उद्योग के लिए तो निश्चित ही मील का पत्थर है, क्योंकि इसके तहत पहली बार एक समग्र विकास की एक कल्पना की गई है कि किस तरीके से रसायन उद्योग को हम एक समग्र विकास, समुचित विकास कर सकते हैं। और इसमें जो भी ये 3 पार्क्स की बात की गई है, इसमें पूरे सिर्फ यूनिट्स ही नहीं स्थापित होंगे बल्कि पूरे वैल्यू चेन इसका जो है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो, ये सारे के सारे, ताकि जो संसाधनों का सबसे बेहतरीन किस तरीके से उपयोग हो सकता है और किस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकता है। लॉजिस्टिक्स में जो खर्चा आज के तारीख में हो रहा है, केमिकल्स को आवाजाही में जो खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हो रहा है, तो ये लॉजिस्टिक्स का खर्चे को बहुत बड़े पैमाने पर कम करेंगे। यही नहीं, इसमें जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फैसिलिटीज का और बेसिक यूटिलिटीज होगा, तो फिर आप देखेंगे कि जो रसायन उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि इसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा और भारतीय रसायन जो उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर जो है कॉम्पिटिटिव बनाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: जी, अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो मौजूदा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं देश भर में या इंडस्ट्रियल पार्क्स जिनको सरकार कहती है, ये जो केमिकल पार्क अब अनाउंस किए गए हैं, ये इन सब मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या इंडस्ट्रियल पार्क से किस तरह से अलग होंगे?
1: ये एक्सक्लूसिव होगा केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे अब अभी आप देखते हैं आईटी पार्क्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स देखते हैं, जहां सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे एंसिलरी इंडस्ट्री, सारे उसकी जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं एक जगह करने का एक प्रयास होता है। अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में आपने रसायन का उद्योग लगा दिया तो वो स्टैंड अलोन होगा। यहां सबके सब एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जिसके तहत जो है सभी इंडस्ट्रीज एक साथ जो है एक जगह से, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में जो होगा, रेल हेड्स अगर वहां शुरू करने हैं गुड्स के माध्यम से अगर करना है, तो ये सारा कुछ जो लॉजिस्टिक जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब सब एक ही जगह में केंद्रित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए केमिकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हजार्डस भी होता है
0: जी।
1: इस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, सेफ्टी के दृष्टि से भी देखेंगे, तो एक क्षेत्र में आप स्पेसिफिक, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते थे, वैसे ही एक डेडिकेटेड जोन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि किधर किधर इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो है हम रसायन उद्योग को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज बहुत बड़े पैमाने में हम लोग रसायन को जो है आयात करते हैं। इसको हम अगर कॉम्पिटिटिव बन गए, एक जब आप कई चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को शेयर करते हो एक जगह में, आपका जब सारा सेटअप होता है तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आपका इंडिविजुअल जो खर्चा होता है यूनिट्स का उसमें कमी आती है और निश्चित ही एक्सपोर्ट्स में हमें उसका फायदा मिलेगा। हम बेहतर चीजों को कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम इसको बेच पाएंगे, तो न सिर्फ आयात को कम करना है अपितु भारतीय रसायन उद्योग को जो है निर्यात के जो मौके हैं उसको भी कैसे बढ़ावा देना है और इसको किस तरीके से हम एक सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहता है, तो हम ऐसे सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज होंगे जहां

0: अभी हम एक चिंता रहती है कि भाई केमिकल्स जो है कभी नदी में बहाया जाता है, कभी नदी नालों में चला जाता है, कभी अंडरग्राउंड चला जाता है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात की गई है, ट्रीटमेंट की बात की गई है, स्टोरेज और डिस्पोजल, बहुत बड़ा विषय होता है केमिकल्स को डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि उसमें बहुत जो है खतरे भी होते हैं, आग लगने की खतरे होते हैं, केमिकल्स के फैलने से जो है कई घटनाएं आपने देखा है, लीकेज को लेकर जो है कई
1: जी
0: घटनाएं रिपोर्ट की गई है देश में। तो जब एक जगह इन सब चीजों को किया जाएगा, हजार्ड वेस्ट जो होता है इसका वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा ही कठिन होता है, अगर इसको एक जगह में अगर केंद्रित करके एक पार्क में अगर हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका बेहतर कंप्लायंस होगा और जो पर्यावरण के रेगुलेशंस हैं, नियमन हैं, उसके अनुसार हमारी ये इंडस्ट्री जो है बेहतर तरीके से चल पाएगी।
1: बिल्कुल, आपने पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसमें बखूबी समझाई हैं। इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाती हुई एक दूसरी जो मंजूरी दी गई है, जो दूसरा कैबिनेट का फैसला है, वो है बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी देने का। तो रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिहाज से तो ये काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भी इससे जुड़ी हुई है, इसके अंतर्गत ही इसको मंजूरी दी गई है। इस सोच को किस तरह से आगे बढ़ाती है ये परियोजना आज जिसको मंजूरी मिली है सुरेश जी, और खास करके जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं और हम कहते हैं कि जो भी देश में हो रहा है, जो भी ग्रोथ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो हर उस नागरिक के पास पहुंचे, हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो उस अगर परिपेक्ष में देखा जाए तो ये योजना कितनी महत्वपूर्ण आपकी नजर में?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि रेल एक क्षेत्र है जहां हमने अप्रत्याशित विकास किया है, खासकर पिछले 10-11 वर्षों में, और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा, जींद में देखा, हमने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन देखा, जो शायद विश्व में उस स्तर का हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जितने सारे डब्बे हमारे यात्रियों के लिए उसमें लगे हैं, इस तरह की व्यवस्था दूसरे किसी देश में नहीं है। तो जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरूर आपको यहां बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसी के तहत काम हो रहा है, चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आवंटन की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो केंद्र सरकार इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ये दोनों जगहों में जो है अगर आप देखेंगे जो लाभ इसको मिल रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को, अब दोनों जगह जो है केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उस प्रदेश के पूरे देश को सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत मैं समझता हूं कि ये परियोजना तैयार की गई है। और निश्चित ही जो है आज हम मेट्रो का जो एक्सपेंशन पूरे देश में हुआ है, आज हम ऑल्टरनेटिव जितने मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को जो इस वक्त नेटवर्क है उसको लगभग 46 किलोमीटर सिर्फ रेल नेटवर्क होगा, नया रेल ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएंगे। सरकार का हमेशा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है,
1: जी
0: तो उसको देखते हुए जो है लगभग 99 गांव जिसमें 7 लाख के करीब लोग हैं उनको इस परियोजना से लाभ मिलेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से चाहे वो सामग्री गुड्स को ले जाने के मामला हो या पैसेंजर्स का हो, उनको जो है किस तरीके से हम एक अफोर्डेबल यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखें कि जो ये रूट की बात की गई है इसमें बहुत प्रमुख पर्यटन के भी केंद्र हैं और साथ ही साथ धार्मिक केंद्र भी है,
1: जी
0: एक तरफ बेल्लारी फोर्ट जैसे इलाके हैं तो दूसरी तरफ श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे बहुत पवित्र स्थान भी जो है इसमें है, तो इस तरीके से हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई भी योजना जब हम लागू करते हैं तो यह प्रयास रहता है कि उसका जो मल्टी प्रॉन्ग्ड उसके जो लाभ हो वो बहुआयामी हो, सिर्फ एक दिशा में नहीं कि चलो रेल की पटरी खुल गई, पर्यटन को भी लाभ होगा, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा, वहां के कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा, वहां के गुड्स को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में, कनेक्टिविटी बनाने में लाभ होगा। तो मैं समझता हूं इस सभी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, और जिस तरह से आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर जब निर्माण कार्य होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि में भी कई तरह के अवसर पैदा होंगे और टूरिज्म की भी आपने बात कही। अंत में यदि हम आपसे जानना चाहें कि अगर हम देखें कि रेलवे का ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स वन अमंग मेनी प्रोजेक्ट्स,

0: विभिन्न परियोजनाओं को साथ अगर हम रखकर देखें तो क्या आकलन है आपका कि भारतीय रेलवे में किस तरह का व्यापक बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है और देश भर में इसका लाभ अगर आम नागरिकों को और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से न सिर्फ अभी मिल रहा है बल्कि आगे आने वाले 20-30 सालों के बाद उनकी जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये परियोजनाएं जब आज अनाउंस भी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री तो उन्होंने आगे का एक रोड मैप बताया और उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं हर उस विजन से जुड़ी हुई है जो हमें 2047 विकसित भारत विजन की ओर ले जाएंगे।
1: आधुनिकीकरण जब भी होता है आज हम देखेंगे जो सड़कों का जाल फैलाया गया है चाहे वो ईस्टर्न क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, देखिए जहां हवाई जहाज तक उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, इस स्तर का जो है बनाया गया है। रेलवे, हम कभी कश्मीर में ट्रेन का जाने का हम सोच नहीं सकते थे। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा था तो उत्तराखंड में रेल का काम चल रहा है, पहाड़ों को काट के जो है रेलवे को वहां तक पहुंचाने का काम चल रहा है। तो आम जनता को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके यहां रोजगार निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो औद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण होता है तो रोजगार निर्माण होता है, रोजगार निर्माण होता है तो जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो है लोग जो है खर्चा कर पाते हैं अपने जेब से और उससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था है उसको स्फूर्ति मिलती है, उसको गति मिलती है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है और इससे जो है एक तो हमारे नेट जीरो का हमने जो एक कमिटमेंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिशंस को लेकर, उसमें क्लाइमेट चेंज में यानी कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो सब विषयों को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, क्योंकि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और इसके साथ साथ हमारा जब तेल का हम जो आयात करते हैं वो बहुत बड़े तादाद में कम होगा, जब हम रेल के माध्यम से, हम जब हाइड्रोजन ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हम चलाते हैं तो उसका फर्क होता है। और निश्चित ही जो है हम समझते हैं कि उससे न सिर्फ हमारा अपना जो प्रदूषण और अन्य चीजों से हम बचते हैं, पर्यावरण बेहतर होता है, अपितु जो वैश्विक स्तर पर भी हमारा उसमें योगदान रहता है। तो मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत 2047 की जब कल्पना करते हैं तो वो समावेशी है, उसमें हम पर्यावरण को साथ में लेते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें हम तरक्की भी करें लेकिन एक संतुलित तरक्की हो जिससे जो है हमारे पर्यावरण को भी चोट ना पहुंचे, हमारे लोगों को भी लाभ पहुंचे और औद्योगीकरण जो है वो एक ह्यूमन फेस के साथ हो, एक मानवीय चेहरे के साथ हो।
0: बिल्कुल, संतुलित लेकिन समावेशी ग्रोथ, यही हमारा मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हम 2047 विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहे हैं। समय इतने की ही इजाजत देता है। सुरेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, सुर्खियों में आज इतना ही, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशरात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। वक्त हो चुका है कव्वालियों का, तो लीजिए सुनिए महमूद निजामी कव्वाल और साथियों से कव्वाली।

0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साला मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। नई दिल्ली ने कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में संयम ने चीन में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। क्लास के मौसीकी के बज़्म में लीजिए सामेन, अब सुनिए सितार पर बजाया हुआ राग बिलास खानी तोड़ी और रागेश्वरी। फनकार हैं उस्ताद शुजात हसन खान।

अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसवदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। नई दिल्ली ने कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में संयम ने चीन में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल एक बिल के मसौदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने की बात की गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। यह मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई और बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई। ज़राए ने आकाशवाणी के खबरों के शोबे को बताया कि मुजवजा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। एक वीडियो मैसेज के जरिए वजीर आजम मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वजीर आजम ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 एहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये NTA की मुकम्मल सफाई का एक हिस्सा है जो पेपर लीक के मामलों में तनाज़े का शिकार रही है। मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालबात को इंतहाई सब्र तहमुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि CJP ने 3 अहम मुतालबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को खत्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे उस वीडियो को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने दावा किया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने जारी मुजाहरों को खत्म करने के लिए उन्हें कार्रवाई करने की हिदायत दी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह वीडियो जाली और AI की मदद से बनाया गया है। यूनिट ने मजीद कहा कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। PIB ने लोगों से अपील की है कि वो मुसद्दका मालूमात के लिए सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर ही इन्हिसार करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वज़रा की मरकजी काबीना से रौनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल बुखारेस्ट में रोमानिया के वजीर आजम इलियाओ बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकतदारी में पेशरफ्त के मामले में समर आवर तबादले ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और तिजारत, सरमायाकारी, साफ तवानाई, कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म की तौसीक की। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी

0: मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफवर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसा रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। स्पेन की हुकूमत ने जंगलात में कई जगह लगी आग के बाद कल कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया है। इस आग के सबब वस्ती मैड्रिड खित्ते में तकरीबन 10,000 अफराद महफूज मकामात पर जाने के लिए मजबूर हुए। मैड्रिड की सरकार ने बताया कि तकरीबन 10,000 लोगों को मुख्तलिफ गांवों से निकाला गया है क्योंकि गर्मी की शिद्दत के सबब जंगलाती आग बेकाबू हो गई है। इस साल पूरे स्पेन में 1,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में आग लगी है। इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटाकल सेक्शन की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की मंजूरी दी है जिस पर कुल 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तामीर से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 46 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। कल सहपहर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान कनेक्टिविटी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भाव्य रसायन स्कीम का काबीना की जानिब से मंजूरी की भी इत्तला दी जिसके तहत मुल्क में 3 मखसूस केमिकल्स पार्क्स कायम किए जाएंगे। भाव्य रसायन स्कीम पर 3,030 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस स्कीम पर 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल की मुदत के लिए अमल किया जाएगा। जनाब वैष्णो ने बताया कि मरकज हर पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया कराएगा। ये 1,000 करोड़ रुपए मुतालिका रियासती सरकार की जानिब से 500 करोड़ रुपए की कम अज कम रकम लगाए जाने की सूरत में मुहैया कराए जाएंगे। शूटिंग में भारत की संयम ने चीन में ISSF आलमी कप में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। 22 बरस की निशानेबाज संयम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैन अल-अक़वामी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों के दूसरे दिन भारत के श्री हरि नटराज मर्दों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नटराज ने हीट्स के दौरान 25 सेकंड और 52 मिली सेकंड की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे 16 तैराकों में 14वां मुकाम हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले आज रात होंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसवदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया गया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। नई दिल्ली ने आज कहा कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में संयम ने चीन में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। शब का एक बजा चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर हम अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज। शब्बा खैर। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 1:10:45 हुए हैं। गीत सुनहरे कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने गीत सुना फिल्म सौदागर से, और इस गीत में आवाज कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर सिंह की रही। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गीत।

अभी आपने गीत सुना मैंने प्यार किया फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, और कार्यक्रम का

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ सुनहरे गीत। अभी जो गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म बेटा से, साथ में स्वर था विपिन सचदेवा का। आइए आप सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आपने ये सुना कुमार सानू की आवाज में फिल्म दामिनी से। जब से तुमको देखा है सनम, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में एक बेहद ही खूबसूरत प्यारा सा गीत।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के

0: प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत और तंजानिया ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। इनमें व्यापार एवं निवेश, विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श बैठक इस माह की 22 तारीख को दार असलाम में आयोजित की गई। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के खिलाड़ियों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल में अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया लेकिन 3-6 से हार गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। तो आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: जब चलूं तो छन छन छन के अंगना रे,
1: जब चूड़िया छनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जावे सजना।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम, यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इजराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल के अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन 3-6 से हार गईं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the legacy that is being implemented in line with the recommendation of the High Level Committee of Experts, chaired

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 में और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गजल बेला सुलाके की आवाज में।

फरीदा खानम की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल दीवारों से मिलकर।

आवाज़ में गाई इस गज़ल के बाद ही अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में गज़ल सोचा नहीं।

0: इसी के साथ ही आज का ये गजल का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि की 4:20 में है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं सिक्किल माला चंद्रा शेखर। आपने प्रस्तुत किया है राग कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध है। आपके साथ गटम पर संगत किया है बी पद्मनाभन ने और संगीत दिया है त्यागराजा ने।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन। कलाकार थे सिक्किल मालाचंद्र शेखर। आपने प्रस्तुत किया राग कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध था। गडम्बर संगत के अभी पद्मनाभन ने और संगीत दिया त्यागराजा ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम रेट 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करिए। आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पांच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 बजे सुनिएगा स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रोहित प्रसन्ना का बांसुरी

7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हरी तीरथ सिंह के गाए शब्द। ये तो वेरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा सुबह 7:30। आठ बजकर 45 मिनट पर सुनिएगा स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय रहेगा विश्व डूबने से बचाव दिवस 2026 पर विशेष। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर बी के राव और डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, श्री रणवीर शर्मा और संचालन करेंगे डॉक्टर जवाहर जैन। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे शालिनी मित्तल।

9:15 पर धरती आकाश ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 9:30 बजे मिट्टी दी महक कार्यक्रम लेकर आएंगी जसपाल कौर। फिल्म संगीत आपकी पसंद का समय रहेगा सुबह 10:10। पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी आप सुन सकेंगे 11:30 बजे। आज आप सुनेंगे तन्वी भट्टाचार्य का गाया राग शुद्ध सारंग। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगौते जी सहाय वार श्री भगौते जी के पातशाही दसवें प्रथम भगौते समरका गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जैस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जे सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जापिया वंड सगया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ

साहिब पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोल।